0: अभी श्री रामचरितमानस गान प्रसारित किया गया। गायक स्वर रविंद्र साठे का और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक श्री सतीश भाटिया।
1: अरे वाह, आइए आइए आइए, आप सभी का स्वागत है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा में एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर।
0: श्रोताओं, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। विषय है खरीफ फसल उत्पादन हेतु कृषि कार्य। वाचक स्वर प्रणीता जैन का।
2: किसान भाई बहनों होनी राम राम। भाई बहनों होनी, आज की कृषि चर्चा में हम बात करांगा खरीफ फसल हेतु आवश्यक कृषि कार्य किसान भाई कस कर। वाचक स्वर छे प्रणीता जैन को। भाई बहनों होनी, अधिकांश रूप से देखे गए छे कि या तो वर्षा समय पर प्रारंभ नहीं होती है या ओको वितरण फसल की आवश्यकता के अनुसार नहीं होते है। एका कारण कई अवस्थान में या तो पानी अधिक हुई जाए या कम हुई जाए। अधिक पानी होने से हानि होवश न कम पानी होने से अच्छी फसल नहीं उगाई जा सकती है। केवल शुष्क पदार्थ का कितनो भाग अनाज में परिवर्तित हुए छे वही हमारा लिए महत्वपूर्ण छे। प्राय हमारा यहाँ बाजरा, ज्वार, मक्का और अन्य फसल नम जो वर्षा पर बिल्कुल आधारित रहे, ओकी कटाई सूचकांक 10-25% तक रहे जो अपना आप में बहुत कम छे। अच्छी फसल तभी मानी जाएगी जब ओको कटाई सूचकांक 40% तक हो या ओका से कम नहीं हो। इतना ऊंचा कटाई सूचकांक प्राप्त करने का लेन ये आवश्यक छे कि भूमि में पोषक तत्व न की कमी ना हो ना ही पोषक तत्व न की अधिकता हो। साथ ही फसल पकता समय इतनो पानी रहे जेका से दाना में सिकुड़न नहीं हो। असो प्राप्त करने का लेन आवश्यक छे कि हमारा पास जितनी देसी खाद छे या फसल न का अवशेष छे उनका ढंग से खाद बनावा जेका से पोषक तत्व न को हास नहीं हो न साथ जहाँ तक हुई सक फसल न का अवशेष और गोबर ख गड्ढा में डालने का साथ अच्छी तरह से सड़ाई कर न खाद बनावा। खाद न का ढेर न ख लंबा समय तक खेत में नहीं पड़े रहने देवा न खाद डालने का पश्चात ओख मिट्टी में बिखेरी कर न अच्छी तरह मिलाई देवा। खरीफ फसल उत्पादन का मध्यम सूखो पड़ी जाने से और समय से पहले ही मानसून समाप्त हुई जाने से फसल उत्पादन जटिलता को विषय हुई जावज। वर्षा का समय में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहे उक्त कारण का फलस्वरूप ही किसान फसल उत्पादन का लक्ष्य पर नहीं पहुंची पाते हैं। एकालेन फसल उत्पादन सुनिश्चित करने का दृष्टिकोण से वर्षा जल को संरक्षण आवश्यक छे जेका से की भूमि का अंदर अधिकतम नमी बनी रहे नमी का संरक्षण किया जा सक। खरीफ का मौसम में फसल उत्पादन का लेन खेत का समुचित रूप से समतल होना अति आवश्यक छे क्योंकि खेत का ऊंचा नीचा होने की स्थिति में वर्षा जल का वितरण का समान गति और समान रूप से नहीं कियो जा सकेगो। परिणाम स्वरूप खेत में नमी को विस्तार एक समान नहीं हुई पाएगा। खेत का समतलीकरण करने का बाद खेत का चारी तरफ मेड़बंदी करी देनु चाहिए जेका से कि वर्षा जल खेत का बाहर नहीं जा सक और खेत का अंदर ही जल का अधिकतम अवशोषण हुई सक। किसान असिंचित दशा में देसी हल से लगातार एक निश्चित गहराई पर जुताई को कार्य करते रहे जेका से भूमि की सतह से कम 12-15 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी को स्तर अत्यधिक कठोर हुई जाए और परिणाम स्वरूप भूमि का अंदर कठोर परत वर्षा जल का नीचे की ओर प्रवेश करने में व्यवधान उत्पन्न करी दे। ऐसी दशा का उत्पन्न होने पर मिट्टी पलटने वाला हल से सबसे पहला कठोर परत कर तोड़ी देनु चाहिए जेका से भूमि का अंदर की जो कठोरता छे वो समाप्त हुई जाए और मिट्टी की जो भौतिक संरचना छे ओका में सुधार होने से मिट्टी का अंदर वायु को आवागमन आराम से होने लगे। साथ साथ वर्षा का भूमि का अंदर अधिकतम अवशोषण होने से फसल उत्पादन में वृद्धि होने में सहायता मिले। खरीफ का मौसम में वर्षा आश्रित भूमि में कृषि कार्य में की जाने वाली जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई इन सभी कार्य का सदैव ढाल का विपरीत दिशा में करना चाहिए। ये एक प्रकार से अवरोधों को कार्य भी करज और वर्षा जल की अधिकांश मात्रा का भूमि का अंदर अधिक से अधिक अवशोषित करते रहे और

खेत का बाहर पानी का नहीं बहने देता है। खरीफ में मक्का, ज्वार, बाजरा और दलहनी फसल की बुआई ढाल का विपरीत मेड़ न पर करनू चाहिए। एकासे अच्छो फसल उत्पादन होवज। इना तरीका में अत्यधिक वर्षा

0: श्रोताओं, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। आइए अब हम आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। तो श्रोताओं, आज के शेष कार्यक्रमों में अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा विश्व साइकिल दिवस पर केंद्रित विशेष बातचीत। ये बातचीत होगी उद्योगपति, समाजसेवी और साहित्यकार आलोक सेठी से। 7:20 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुने जुदाई फिल्म के गीत और कहानी।
1: एक महत्वाकांक्षी बीवी।
2: हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते हैं, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा।
1: एक प्यार में हर हद तक गुजर जाने वाली प्रेमिका।
2: अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी।
3: कितना?
2: अच्छा तो 2 करोड़।
1: और इन दोनों के बीच में फंसा एक लाचार ईमानदार पति।
4: अगर बेईमानी करके घूस लेके लाखों करोड़ों रुपए कमाता तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, जबकि इस बेईमानी में सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ मैं बिकाऊं।
1: हम सुनाएंगे जुदाई फिल्म की कहानी और गीत खास आपकी फरमाइश पर। इस बुधवार सुबह 7:20 पर जरूर सुनिएगा एक ही फिल्म से कार्यक्रम।

सुबह 8:15 और शाम 5:30 आनंद लीजिएगा निमाड़ी लोक संगीत में, लोक संगीत का। सुबह 8:30 पर होगा आपके मीत ये गीत कार्यक्रम। दिन में 10:00 जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर होगा हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 10:35 पर मैंने सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत। इस कार्यक्रम में होगी वार्ता, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम। वार्ताकार होंगी मीना चौरसिया। इसके अलावा होंगी रेसिपी और चर्चा होगी पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण पर। साथ ही होंगे फिल्मी गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: शाम 6 बजे युवाणी कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा आकाशवाणी स्थापना के 90 वर्षों का स्मरणोत्सव। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:30 बजे। 7:21 पर किसान श्रोता सुने खेती गृहस्थी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर NSD आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण एपिसोड नंबर 3 मध्यम वर्ग कल्याण हम प्रसारित करेंगे। रात्रि 9:15 बजे स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

0: अरे क्या बात है, सुबह की चाय और अखबार दोनों मिल जाए तो सुबह का आनंद दोगुना हो जाता है।
1: जी हुजूर, यदि चाय और अखबार के साथ हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो सुबह और भी सुहानी हो जाती है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। तो सुनते रहिए
1: निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

आज की ताज़ा खबर में पेश है आज प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण कार्यक्रम होंगे आयोजित। आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रत्येक विकासखंड एवं नगरीय निकायों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन से 300 मरीजों की जांच। सघन टीबी उन्मूलन अभियान के तहत विकासखंड खंडवा के ग्राम कोरगला रोशनाई बमनगांव आखई और टिगरिया में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन के माध्यम से 300 संभावित टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। शिविर के दौरान स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीणों को टीबी के लक्षण बचाव और उपचार के बारे में जागरूक भी किया। आयोजित होंगे जन कल्याणकारी शिविर। आगामी 12 से 18 जून के बीच जिले के विभिन्न विकास खंडों एवं नगरीय निकायों में जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए शिविर आयोजित होंगे। आईटीआई में युवा संगम अप्रेंटिस मेला जून में। आगामी 4 जून को शासकीय आईटीआई सिहाड़ा रोड खंडवा में सुबह 11 से 5 बजे तक रोजगार स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेला आयोजित होगा। जिला रोजगार अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह सिलोटी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ आईटीआई में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। और अब खबरें खेल जगत से। पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में थाईलैंड की खिलाड़ी को 25-23 21-16 से हराया। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का लेवल 1 बैडमिंटन टूर्नामेंट है। नॉर्वे चेस में प्रज्ञा नानंदा गुकेश जीते। दिव्या ने हम्पी को हराया। देशमुख टाइटल रेस में कायम। छठे राउंड में सभी भारतीय हारे थे। सातवें राउंड में शानदार वापसी की। और अब एक नजर मौसम के हाल पर। जिले में कल शाम भी तेज हवा आंधी का दौर जारी रहा। आज नौतपा का अंतिम दिन। कल दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये थी आज की ताजा खबरें। समाचारों का संकलन किया आदित्य दुबे ने।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विश्व साइकिल दिवस पर केंद्रित आज की हमारी ये विशेष बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, हर साल 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस मनाने के पीछे कई उद्देश्य और फायदे हैं। साइकिल हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, तो वहीं साइकिल चलाना सेहत के लिए भी लाभकारी है। ऐसे में साइकिल का हमारे जीवन में अहम स्थान है। और जब हम साइकिल की बात करें तो याद आती है वो रैली जिसमें अनलिमिटेड लोगों ने साइकिल चलाई थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और उस साइकिल रैली का आयोजन जिन शख्स ने किया था उनको हम कैसे भूल जाएं? तो आज उन मेहमान को ही हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। जान लेते हैं उनका परिचय उन्हीं की जुबानी।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नाम आलोक सेठी है और आपके ऐसे खंडवा शहर का मैं बाशिंदा हूँ। मुख्य रूप से व्यवसायी हूँ, लेकिन उससे समय चुरा के कुछ लिख पढ़ लेता हूँ। लगभग 15 किताबें मेरी अभी तक आ चुकी है और यात्राओं का शौक है। लगभग 70-80 देशों की यात्राएं मेरे खाते में हैं। कुछ कहीं संबोधन का मौका आता चले जाता हूँ। और इस कला की, संस्कृति की, साहित्य की नगरी का, जहाँ पर इन सब चीज के पराग उड़ते रहते हैं, एक छोटा सा कलमकार मैं भी हूँ।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बताया है कि आप कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं। हमारे देश के अलावा अन्य देशों में साइकिल में लोग कितना आनंद लेते हैं, कितनी सवारी करते हैं?
1: देखिए, साइकिल के साथ में एक बड़ा भारत में जो दिक्कत आई है, हमारे धीरे धीरे न जाने क्यों हम लोग साइकिल को गरीबों

प्रतीक मानने लग गए, गरीबी का प्रतीक मानने लगे हैं। इसके उलट पूरी दुनिया में साइकिल जो है वो अमेरिकी या रईसी की निशानी हो गई है, और उन लोगों ने साइकिल को अपनाया ड्यू टू फिटनेस हेल्थ। और दुनिया की अगर बात करें तो नीदरलैंड वो देश है जहां पर वहां का प्रधानमंत्री भी साइकिल से अपने संसद भवन में जाता है, और जिसे वर्ल्ड के साइकिल की राजधानी बोलते हैं। नीदरलैंड के जितने लोग उस देश में रहते हैं

0: या आप ये कह सकते हैं कि एक डच व्यक्ति है वो साल भर में 1000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चला लेता है। नीदरलैंड में एक प्रांत है उसका नाम है न्यू पीत प्रांत, वहां पर जो हार्टन नगर पालिका है वहां पर सिर्फ साइकिल चलाई जाती है, वहां पर अगर आपके पास कार या बाइक है तो चलाना अलाउ नहीं है। और उस देश में उन लोगों ने साइकिल के लिए अलग से ट्रैक बनाए हैं, यहां तक कि अगर आप अपने ऑफिस को साइकिल से जाते हैं तो आपको $0.22 पर किलोमीटर का वो लोग अनाउंसमेंट देती है, आपको इतना इंसेंटिव देती है। तो वहां साइकिल चलाने को प्रोत्साहन सारी तरह से है और साइकिल को वहां पर कभी भी हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और आगे जाएं तो डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क में भी लगभग 60% लोग साइकिल से चलते हैं और वहां पर भी पूरे देश में आप नजर मारेंगे तो हर तरफ आपको साइकिल ही साइकिल नजर आएगी। तो यूरोपियन देश की बात करें या हम लोग डेवलप कंट्री की बात करें तो सब लोगों ने साइकिल को बड़े पुरजोर आंदोलन के साथ में अपनाया है और सारी जगह आजकल साइकिल की बात होने लग गई है। रोड पर एक बार कार वाले को जगह मिलेगी न मिलेगी, लेकिन साइकिलों को हमेशा वो लोग सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं।
1: क्या वजह हो सकती है साइकिल को अपनाने की?
0: देखिए, बहुत सारे कारण है साइकिल को अपनाने के। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो एक तो फिटनेस में बड़ा काम करती है साइकिल। अगर आपने 1 घंटे साइकिल चला ली तो आपकी 500 कैलोरी बर्न होती है, जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट या हेल्थ फिटनेस के जो गुरु हैं कहते हैं कि सप्ताह भर में हमने कम से कम 2000 कैलोरी तो एक्सरसाइज से बर्न करना चाहिए। तो साइकिल अगर आपने सप्ताह में 4 घंटे भी चला ली तो आपके सारे फिटनेस के काम हो जाते हैं, यात्रा हो जाती है। साइकिल चलाते चलाते आप आसपास के जो प्राकृतिक दृश्य हैं, जो नेचर है, उससे आत्मसात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। साइकिल आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कोई धुआं नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो साइकिल तो सारी दृष्टि से, सारी तरह से रीजनेबल है, बहुत सस्ती आ जाती है, कम कीमत में आ जाती है। तो बड़े कम पैसे लगाकर आपको एक्सरसाइज है, आपका सफर पास हो जाता है और साथ में आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया साइकिल अपना रही है, हम लोगों ने भी अपनाना चाहिए।
1: हमने ये देखा है कि आप विगत कई वर्षों से साइकिल रेस करवाते हैं या साइकिलिंग करवाते हैं, कैसे आपकी उसके प्रति जागरूकता हुई या क्या प्रेरणा स्रोत है?
0: देखिए, जब दुनिया देखी, बाकी जगह को देखा, तो सिर्फ खाली बात करने से काम नहीं होगा ना कि मैं बोलूं साइकिल चलाना चाहिए या साइकिल पर बात होना चाहिए, कुछ करके भी दिखाएं। तो हम सब लोगों के मन में आया कि खंडवा में भी एक इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए और हर साल जनवरी का जो आखिरी रविवार होता है उस पर हम लोग एक खंडवा साइकिलथन के नाम से आयोजन करते हैं। बड़ी बात है कि शहर ने भी उस आयोजन को हाथों हाथ लिया और हर साल 3000, 4000, 5000 बच्चे व्यक्ति उस साइकिलथन में आते हैं। चूँकि ठंड का समय होता है और सुबह 6 बजे से बच्चों का उत्साह नजर आता है तो पूरा शहर उस साइकिलथन में भाग लेता है। वो कोई रेस नहीं है, एक तरह से फन एक्टिविटी है। जो खंडवा का इंदौर नाका है वहां से सारे साइकिल लेके निकलते हैं और फिर स्टेशन तक आते हैं, वापस पलट के जाते हैं। बड़ी बात है कि शहर के सारे गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सारे लोग उस साइकिलथन में भाग लेते हैं। एक और बड़ी बात है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने उसे मान्यता दी, क्योंकि पहली बार इतने सारे लोगों ने एक साथ साइकिल के ऊपर एक ध्वज लेके चले। एक ग्रीन खंडवा, क्लीन खंडवा के नाम से हम लोगों ने ध्वज बनाया और सारे लोग उसे साइकिल पर लेके चले तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम आई और खंडवा में आके उन्होंने इस आयोजन को मान्यता दी। और हर साल आयोजन बढ़ता जा रहा है, लोगों का उसमें प्रतिसाद मिलता है तो खूब अच्छा लगता है कि ठीक है, फिट हैं तो हिट हैं की बात करते हुए कम से कम खंडवा के लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं।
1: आपके परिवार में भी साइकिल चालक हैं और वो अपने नाम भी दर्ज करा चुके हैं कुछ रिकॉर्ड या कुछ इनाम, तो इस तरफ कैसे रुझान उनका बढ़ा?
0: देखिए, बड़े लंबे समय से पुराने लोग एक बात बोल गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया
1: जी।
0: तो फिटनेस पे तो बात होना ही चाहिए, और अगर आपके पास सब कुछ है और अगर आप फिट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक शरीर एक ऐसी चीज है जो मरते दम तक हम जिसके साथ में रहने वाले, जो हमारा साथ देने वाली है। अब जीवन कैसा हमको बिताना है, एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि नारायण मूर्ति से किसी ने पूछा एक बार, आदरणीय, आपका परिवार, आपकी कंपनी, आपका नाम सब कुछ शिखर पे है, फिर भी कोई एक हाथ चीज है क्या जिसका आपको अफसोस है? इतने बड़े आदमी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जब मेरा जवानी का दौर था तो मैंने जो समय अपनी फिटनेस को, एक्सरसाइज को देना था वो मैं नहीं दे पाया, और आज ये है कि मैं अगर कोई नया काम करना चाहूं तो मेरा शरीर मुझको इसकी इजाजत नहीं देता। तो इतने बड़े आदमी को भी एक बात का रिग्रेट है। देखिए, जवानी तो सबकी बड़े अच्छे से कट रही है और कट जाएगी, लेकिन हमारे जीवन के आखिरी 5-10 साल कैसे अच्छे से बीते हैं, कैसे अच्छे से जाएं, उस पर हमको आज से काम करना पड़ेगा। तो अच्छा लगता है, पूरा परिवार भी हमारा इस बात में सक्रियता रखता है। मेरा बेटा पल्लव है, वो मैराथन धावक है, तो लगातार मैराथन दौड़ता है, बॉम्बे, दिल्ली सारी मैराथन दौड़ के आया। इवन फुकेट, थाईलैंड में भी जाकर उसने भारत का प्रतिनिधित्व किया और वहां पर भी जाके मैराथन दौड़कर आया। तो जब पूरा परिवार फिटनेस पे बात करता है, हेल्थ पे बात करता है, तो फिर देखते देखते आपके खान पान, आपका रहन सहन सब वो कल्चर में आ जाता है। तो मेरा तो सभी से अपील यही है कि फिटनेस पे लगातार काम करना चाहिए और ये स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है।
1: और चूंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाने वाले हैं, किस तरह से हम साइकिल का उपयोग करके हमारे पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं?
0: देखिए, जो सबसे बड़ी बात साइकिल में यही है कि कोई आपको ईंधन नहीं जलता, कोई आपका

0: धुआं नहीं निकलता, कोई आपकी आवाज नहीं करती, एक साइलेंट। हमने एक जगह लिखा भी था कि जीवन में चेन और साइकिल में चेन हो तो बड़ा अच्छा जीवन चलता है। तो साइकिल वाकई में पर्यावरण की एक बड़ी रक्षक है, पर्यावरण मदद करती है। जरूरी है कि सारे बड़े लोग इसको चलाएं, सारे अच्छे लोग इसको चलाएं, और वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया के अंदर साइकिल को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ तो आज हमारे भी हो सकता है। और भारत में भी साइकिल चलाने वालों की संख्या कम नहीं है। अगर वर्ल्ड वाइड हम रिकॉर्ड देखने जाते हैं तो भारत में 67% लोग साइकिल सप्ताह में कम से कम एक बार चलाते हैं। यह प्रतिशत हम जाके कनाडा में देखते हैं तो 16 हो जाता है। तो गिनती तो बड़ी है साइकिल चलाने वालों की, और बस यही जरूरी है कि साइकिल चलाने वालों की हम पीठ ठोकें, उनको प्रोत्साहन दें, उनका उत्साह बढ़ाएं और हम लोग खुद भी साइकिल चलाएं।
1: चूंकि इस बार मौसम बहुत गड़बड़ा गया है, जब नवतपा में सूर्यदेव को बहुत तेजी से तपना था तब बारिश हो गई, और नवतपा के पहले के दिन जो है वो बड़े ही तेज गर्मी वाले रहे, भीषण गर्मी वाले रहे। ये जो मौसम में एकदम से परिवर्तन आया है, किस तरह से हम इसके लिए दोषी हैं?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, तरक्की तो होगी, प्रगति तो होगी, है ना, और प्रगति के लिए बहुत सारे समझौते हमको करना पड़ेंगे, लेकिन वो समझौते कहीं अपनी सीमा पार तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि प्रगति के लिए हम दुर्गति की ओर चले गए, या जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, जो वसुंधरा ने हम पर कृपा बरसाई है, हम कहीं उसके साथ में तो खेल नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह से पेड़ कटे हैं, जिस तरह से जमीन में बोरिंग करके हमने पानी का दोहन किया है, जिस तरह नदियों को खराब किया है, तो वो सारी परिणाम सामने आ रहे हैं कि भीषण गर्मी, माने देख रहे हैं हम लोग की 45 डिग्री टेम्परेचर तो आम हो गया, 46 आम हो गया, दिल्ली का 52 तक चले गया जिसको हम ठंडा मानते थे। तो ये सारे उस बात के परिणाम है। जरूरत है फिर जागने की, बहुत देर नहीं हुई है, और कहीं ये आने वाली पीढ़ी हमें वो नहीं कहे कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो फिर बरसात सामने है, मौसम सुहाना है, हम लोग प्रण ले कि अपने घर के आसपास कम से कम पेड़ लगाएं, और नहीं 100 पेड़ लगाएं, नहीं 50 पेड़ लगाएं, 5 लगाएं, 2 लगाएं, 1 लगाएं, लेकिन उसे सहेजे, संवारे, साथ दें और उसको तैयार करें। अगर बोरिंग कर लिया हमने ठीक है पानी के लिए, तो जो पानी हमारे छत पर इकट्ठा हो रहा है उसको हम लोग क्या बोरिंग तक पहुंचा रहे हैं? हमने अंडर वाटर पे कुछ काम किया है क्या? उस पर काम कर ले, नदियों का पानी संभाले, उसको उस तरह से सहेजें, उसको प्रदूषण से बचाएं। तो अब जागना जरूरी है। अगर
1: विश्व साइकिल दिवस पर केंद्रित ये विशेष भेंटवार्ता आपने सुनी, हमने बातचीत की उद्योगपति, समाजसेवी और साहित्यकार आलोक सेठी से। FMN 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा, प्रदेश कैबिनेट में लिया गया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें, शुरुआत इंदौर से होगी। और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन

0: सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भूखंडधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डीड ऑफ कन्वेंस का निष्पादन और पंजीयन किया जाएगा ताकि नागरिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि संक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर भी जानकारी दी।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जन सुनवाई के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के ओर हम आगे कदम बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में अब भी लोग जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं और ये सेवा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।
2: आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी ये प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अलनीनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण

0: में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेन देन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स ओटीटी की नवम्बर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाली स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिसके चलते गर्मी और लू का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में महिला स्व सहायता समूहों ने गेहूं उपार्जन अवधि में 7,712 किसानों से 5,27,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की। खंडवा में कल युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के रामा में सचिवों और पटवारियों की कल बैठक ली और डिंडोरी में जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने लिया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें। शुरुआत इंदौर से होगी और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दे सकता है दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक ही फिल्म से कार्यक्रम। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं विद्या सिंह और आज की सुनहरी फिल्म है जुदाई। इस फिल्म का निर्देशन किया राज कंवर ने। तो आइए परिचय करवा दें इस फिल्म के खास किरदारों से आपका। राज के रूप में नजर आए हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार अनिल कपूर। काजल यानी श्रीदेवी है एक महत्वाकांक्षी बीवी राज की। वही जाह्नवी उर्मिला मार्तोंडकर राज की दूसरी पत्नी बनी है इस फिल्म में। सईद जाफरी जाह्नवी के अंकल और राज की कंपनी के मालिक हैं। कादर खान काजल के पिता, फरीदा जलाल काजल की माँ, जॉनी लीवर हैं हैरी काजल के भाई। परेश रावल ने काजल के मकान मालिक हसमुख लाल का किरदार निभाया है। वहीं उपासना सिंह दो अलग अलग किरदारों में नजर आई है, एक हसमुख लाल की पत्नी और दूसरी हैरी की पत्नी। साथ ही ये दोनों माँ बेटी भी हैं। अतिथि भूमिका में

0: नजर आई हैं पूनम ढिल्लो, जो बनी है काजल की दोस्त। इस फिल्म के सारे ही गीतों को संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने और गीत लिखे समीर ने। तो आइए आपको ध्वनि चित्रों के माध्यम से हम दिखाते हैं फिल्म जुदाई। फिल्म की कहानी शुरू होती है राज और काजल की शादी से। काजल अमीर पति और बेशुमार खर्च के सपने लिए इंजीनियर राज के घर में कदम रखती है। वहीं राज एक बहुत ईमानदार और साधारण सा जीवन जीने वाले मध्यम वर्गीय पति हैं।
1: कितनी गर्मी है ना?
2: लेकिन आजकल तो सर्दियों का मौसम है।
1: मगर पता नहीं मुझे क्यों इतनी गर्मी लग रही है। एसी चला दो, कहाँ है?
2: एसी नहीं है, हमारा दिल ही हमारे लिए एसी है।
1: सच कह रहे हैं, पानी पी लीजिए। अरे रे, मगर ये ठंडा नहीं है, शायद आपको फ्रिज से ठंडा पानी पीने की आदत है, ये ना?
2: मुझे मटके का पानी पीने की आदत है, फ्रिज नहीं है।
1: हाँ मजा कर रहे हैं आप, इतने बड़े इंजीनियर हैं, तो क्या घर में फ्रिज और एसी भी नहीं है?
2: ना फ्रिज है, ना टीवी, ना वीसीआर, ना वॉशिंग मशीन।
1: वही तो सोचा होगा पहले इन सब चीजों को संभालने वाली घर में आ जाए, फिर खरीदेंगे, जैसे है ना?
2: नहीं काजल, ये सब चीजें खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है।
1: तो फिर घर में है क्या?
2: तुम्हें प्यार से देखने वाला

0: प्यार और तकरार में जिंदगी आगे बढ़ती है और परिवार में दो नए सदस्य और जुड़ जाते हैं, राज और काजल के बच्चे रोमी और प्रीति। चाहे काजल की शादी को 7 साल हो गए हों, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदली है।
1: अच्छा काजल, मैं बच्चों को स्कूल पहुंचाकर ऑफिस चला जाऊंगा, तुम सब्जी वगैरह खरीद कर बस में घर चली जाना।
2: घर चली जाना काफी है, बस में चले जाना कहने की कोई जरूरत नहीं। अरे 7 साल हो गए हमारी शादी को, कभी कार में बैठी हूँ क्या? सुनो, काम में उलझ कर खाना खाना भूलना मत, और तुम लोग भी अपना टिफिन बॉक्स पूरा खाली करना, कुछ छोड़ना नहीं। हूँ
3: अच्छा माँ।
2: अरे कितनी बार समझाया, मम्मी पुकारा करो मम्मी, हाई सोसाइटी में कोई भी माँ नहीं पुकारता। हा?
3: अच्छा मम्मी, बाय मम्मी।
0: अपने आप को अमीर दिखाने के लिए काजल अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बताती है और एक दिन उससे टकराती है उसकी सहेली
4: निशा।
2: अरे काजल, अरे हाउ नाइस टू सी यू, कितने सालों के बाद मिल रही है, कहाँ खो गई थी?
5: मैं अपने हस्बैंड के साथ कनाडा चली गई थी। अच्छा तुम्हारा बंगला कहाँ है?
2: बंगला?
5: हाँ, तुम रहती कहाँ हो?
2: गोल्फलिंग्स में।
5: गोल्फलिंग्स? अरे मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ।
0: और झूठ जंजाल के चक्कर में वह उसी बंगले के सामने आ रुकती है जो उसकी सहेली निशा का होता है।
2: निशा? हाँ? यही मेरा बंगला है, मगर ताला लगा कर ये वॉचमैन कहाँ चला गया? चाबी मेरे पास नहीं है।
5: चाबी मेरे पास है क्योंकि ये बंगला मेरा है। You haven't changed. I hate you, काजल। इसलिए नहीं कि तू गरीब है या तेरे पास बंगला गाड़ी नहीं है, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर तूने अपने पति और घर की जो बेइज्जती की है, I hate you for that. काजल, अपना घर अपना होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। स्वर्ग जैसा लगना चाहिए अपना घर, नहीं तो उसे नर्क बनते हुए देर नहीं लगती। जो है जितना है उसी में खुश रहना सीख।
0: काजल को निशा की हिदायत सही नहीं लगती और वो अपने आप को अपमानित महसूस कर वहाँ से चली जाती है। काजल निशा की हिदायत से बहुत नाराज है, लेकिन राज उसकी हर बात को बड़ी सहजता से समझा देता है। काजल पर अपने आप को अमीर बताने और बनाने का भूत इस कदर सवार है कि वो पूरे टाइम अमीरों जैसा व्यवहार करती है। और काजल घर में ही नहीं, सारे मोहल्ले में इस तरह की अमीरी वाली बातें करती फिरती है, और जब उसकी बातें पूरी नहीं हो पाती तब मोहल्ले की महिलाएं उसे चिढ़ाती है और वो सारा गुस्सा राज पर उतार देती है।
1: असल में मालिक ने रोक लिया तो
2: मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया? पप्पू की माँ बोली, क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? और गौरी की चाची बोली, टैक्सी नहीं मिली होगी अब तक।
1: काजल नहीं, नहीं, नहीं।
0: लेकिन राज उसे मना ही लेता है।

और एक दिन मिस्टर साहनी, जो कि राज की कंपनी के मालिक हैं, उनकी इकलौती भतीजी भारत आती है, लेकिन उसे एयरपोर्ट से लाने के लिए ड्राइवर नहीं है। तो ऐसे में राज उसे एयरपोर्ट से लेने पहुंचते हैं। जाह्नवी राज को ड्राइवर समझ बैठती है और उनके साथ अनाप शनाप बातें करने लगती है। राज उसे रास्ते में ही छोड़कर गाड़ी लेकर वापस कंपनी पहुंच जाते हैं। जल्दी ही जाह्नवी की

0: गलती भी दूर हो जाती है।
1: रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई?
2: प्रॉब्लम कैसी होती अंकल, आपके इतने काबिल ड्राइवर साहब जो थे मेरे साथ।
1: ड्राइवर राज, मैंने इनको बताया नहीं कि तुम हमारी कंपनी में एक इंजीनियर हो यार।
0: जाह्नवी राज से इतनी प्रभावित है कि उससे मिलने के बहाने ढूंढती रहती है। वो राज से मिलकर उसकी पसंद पूछती है और उसे पता चलता है कि राज को संगीत सुनना बहुत पसंद है। इसी बीच एक घटना होती है, जाह्नवी अपने अंकल के बिजनेस पार्टनर विक्रम के साथ गेस्ट हाउस देखने जाती है और तूफान में वे गेस्ट हाउस पर ही फंस जाते हैं और विक्रम मौके का फायदा उठाते हुए उससे जोर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन राज गेस्ट हाउस पहुंच जाता है और जाह्नवी को विक्रम से बचा लेता है। अब जाह्नवी राज को वास्तव में अपना दिल दे बैठती है।

0: इधर हैरी हसमुख लाल की बेटी वाणी से शादी कर लेता है, जिसे सिर्फ तीन ही शब्द बोलना आते हैं, अप्पा चप्पा डब्बा।
1: एक काम करो, वो भजन ही सुना दो ना जो तुलसी का रान लेते हुए गाया था तुमने।
2: अप्पा डब्बा चप्पा।
1: तुमने नहीं गाया? फिर किसे गाया?
2: अप्पा चप्पा चप्पा।
1: तुम्हारी माँ ने गाया? यानी कि तेरे अब्बा ने मुझे बेवकूफ बनाया और ये डब्बा मुझे थमा दिया है। तभी सोचूं स्टोरी में चेंज कैसे आ गया है।
0: एक दिन जाह्नवी राज के ऑफिस पहुंचती है और उसे पता चलता है कि
3: आज मिस्टर राज का बर्थडे है, उन्हें हर साल मुबारकबाद दिया करती हूँ।
0: और जाह्नवी राज के लिए गिफ्ट खरीदने पहुँचती है। वो राज के लिए एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर खरीदना चाहती है, लेकिन वो पहले से ही काजल खरीद चुकी है। उस टेप रिकॉर्डर को पाने के लिए जाह्नवी काजल से बात करती है।
3: ये टेप रिकॉर्डर आप मुझे दे देंगे प्लीज? क्या? अरे एक एक रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है, तो वो रुपये मैं आपको दे देती हूँ, फिर तो ठीक है। फिर भी मैं क्यों दूँ? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, पांव भी दुख गए। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना। हाँ अच्छी जबरदस्ती है, मैं इसे अपने हस्बैंड को प्रेजेंट में दे रही हूँ। अच्छा आप अपने हस्बैंड को वो बड़ा वाला दे दे तो
4: वो तो बहुत खुश हो जाएंगे।
3: लेकिन उसे खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है, वो तो कम से कम 10,000 का होगा, तो 10,000 रुपए मैं आपको दे देती हूँ, फिर तो ठीक है।
0: सौदा तय होता है और टेप रिकॉर्डर लेकर जाह्नवी एयरपोर्ट पहुँचती है और टेप रिकॉर्डर गिफ्ट करती है। उसके अंदर अपने दिल की बात रिकॉर्ड कर एक कैसेट भी डाल देती है। राज

0: पहुंचता है जहां काजल बड़े टेप रिकॉर्डर के साथ राज का इंतजार कर रही है। तब उसे पता चलता है,
1: अरे यही तो खरीदा था मैंने, तुम्हारे पास कहां से आ गया?
2: तुम्हें 10,000 रुपए देने वाली पागल लड़की मेरे बॉस की भतीजी है।
1: अरे इसमें कैसे भी है, तुमने बजाए?
2: नहीं, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, तुम ही बजाओ।
1: ठीक है।
3: जन्मदिन की बधाई हो राज, मैं तुम्हें इस मौके पर सिर्फ ये टेप रिकॉर्डर ही तोहफे में नहीं दे रही हूँ, बल्कि ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ। आई लव यू राज, आई लव यू। हाँ राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी।
0: काजल गुस्से में आकर जाह्नवी का गिफ्ट बाहर फेंक देती है, जो बाहर पेड़ पर जा अटकता है। उसमें से जाह्नवी की आवाज गूंजती रहती है। इधर जाह्नवी को उसके अंकल बताते हैं कि राज पहले ही शादीशुदा है और वो राज को भूल जाए। इस बीच राज भी वहाँ पहुँच जाता है और जाह्नवी को समझाता है।
2: मैं तुमसे ये कहने आया था कि
3: तुम शादीशुदा हो, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ राज।
2: दिमाग खराब हो गया तुम्हारा?
3: प्यार दिमाग से नहीं, दिल से किया जाता है राज।
2: मिस्टर सहनी, आप ही कुछ समझाइए इसे।
4: मैंने तो बहुत समझाया, अब तुम ही समझाने की कोशिश करो।
2: बेवकूफी की बातें मत करो, मेरे दो बच्चे भी हैं।
3: अब दो बीवियां हो जाएंगी, उसे शादी कर लो राज।
0: राज को पाने के लिए जाह्नवी हर हद पार कर जाना चाहती है। फिर उसे याद आता है कि क्यों ना राज से शादी करने की बात वो सीधे काजल से ही करे। और फिर वो काजल से मिलने मंदिर जाती है। वहाँ काजल भी अपने पति के पीछे पड़ी इस परेशानी से बहुत परेशान है और भगवान से प्रार्थना कर रही है। जाह्नवी काजल से मिलती है और उसे एक ऑफर देती है।
3: प्लीज आप मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा बना लीजिए। अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी।
1: कितना?
3: अच्छा तो 2 करोड़।
0: वर्षों से स्वयं को अमीर देखने वाली काजल के मन में बार बार जाह्नवी के शब्द गूंजते हैं। काजल का अंतर्द्वंद खत्म होता है और राज से जाह्नवी के साथ शादी करने की जिद कर बैठती है। राज को दोबारा शादी की बात समझाने के लिए वो अपने माता पिता को भी बुलवाती है। माँ तो नहीं लेकिन पिता राज को समझाते हैं।
5: क्या कहते हैं दामाद जी?
4: कह दिया ना, नहीं करूँगा, किसी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करूंगा।
0: जाह्नवी राज से शादी करने और 2 करोड़ की व्यवस्था करने के लिए अपने हिस्से के शेयर जेवर सब बेच देती है। और उधर काजल राज को जाह्नवी से शादी करने को मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाती है। काजल की हालत खराब हो जाती है और काजल की जिंदगी बचाने के लिए राज जाह्नवी से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। पहले राज और काजल का तलाक होता है और घर में राज और जाह्नवी की शादी हो जाती है।

काजल अपने घर में जाह्नवी के रूप में सौतन का स्वागत करती है और जाह्नवी काजल को 2 करोड़ रुपए से भरा नोटों का बैग थमाती है। काजल बहुत खुश है। पैसा मिलते ही

काजल की जीवन शैली में बदलाव आ जाता है। काजल नया बंगला खरीदती है, वो बंगला जो काजल की सहेली निशा का है। काजल नोटों को बिस्तर पर बिछाती है और राज को जाह्नवी के साथ रहने भेज देती है। राज बहुत दुखी है। काजल आए दिन पार्टी करती है, यहाँ तक कि वो बच्चों पर भी ध्यान नहीं देती। जाह्नवी बच्चों का ख्याल रखती है और बच्चों से मेल जोल बढ़ा लेती है। काजल राज और बच्चों की सारी जिम्मेदारी जाह्नवी पर छोड़ देती है, लेकिन राज अपनी पुरानी जिंदगी में ही खुश है। पैसों के नशे में चूर काजल देर रात घर लौटती है और वो राज के खाने तक की चिंता नहीं करती। राज परेशान है, लेकिन जाह्नवी सहज ही परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है। धीरे धीरे राज और जाह्नवी करीब आ जाते हैं।

0: काजल किटी पार्टी में व्यस्त है, तभी उसकी सहेली ऐसी बात करती है,
1: आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, बाकी के दिनों में भले ही पति की परवाह करे या ना करे, लेकिन शादी की सालगिरह का दिन तो पति के साथ ही गुजारती है।
0: काजल को याद आता है कि उसकी शादी की सालगिरह भी आज है। वो किटी पार्टी छोड़कर घर भागती है, लेकिन घर पर उसे न बच्चे मिलते हैं न ही पति। काजल को अब कुछ भी ठीक नहीं लगता। वो तय करती है कि अब वो पहले जैसे अपने पति और बच्चों का ख्याल रखेगी। और सुबह होते ही वो रसोई घर में पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पति राज और बच्चे पहले ही नाश्ता करके निकल चुके हैं। काजल बच्चों और पति का दिल पैसों से जीत लेना चाहती है।
2: चलो, एक मौका निकल गया तो क्या, प्रीति का बर्थडे आ रहा ना, ऐसी पार्टी दूंगी कि हंगामा हो जाए।
0: लेकिन बच्चे कुछ और ही चाहते हैं।
3: क्या पार्टी दी, मजा आ गया?
4: नहीं नाना जी, मजा नहीं आया। मजा तो तब आता जब नानी जी हमें बर्थडे के दिन पिकनिक पे ले जाती और हैरी मामा हमें खूब हंसाते।
3: अरे बेटा, तेरा हैरी मामा अब हंसाने के काबिल नहीं रहा।
4: क्यों?
3: उसके हंसाने की बैटरी डाउन हो गई है, वो शादी करके फंस गया बेचारा, अच्छा खासा तो खुआ रहा।
5: शादी

0: बच्चे और जाह्नवी आपस में बहुत घुल मिल गए हैं। फिर आती है करवा चौथ।
1: मुझे तो पसंद ही नहीं है ये मेहंदी वेहंदी लगाना, एकदम मिडिल क्लास वालों की चीज है ना। पर क्या करूं, सब लोगों ने जिद कर ली कि आज करवा चौथ का दिन है, आपको मेहंदी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है।
2: मैं ऑफिस जा रहा हूँ काजल, टीका लगा दो।
1: क्या तुम भी देखते नहीं मेहंदी लगाई हुई है?
2: तो फिर क्या ऐसे ही चले जाऊं?
1: ऐसे क्यों जाओगे, जानवी है ना, उसे कहो।
2: जानवी, जानवी तुम ही टीका लगा दो।
1: जी। चलो जी, आज अपने हाथ से ही लगा लो।
2: आज बिना टीका लगाए जाता हूं, देखता हूं कौन सा अपशगुन होता है।
1: सुनिए जी, टीका मैं लगा देती हूं।

0: कोई सच्चे दिल से करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। चलता हूँ।
1: काजल को जाह्नवी और राज की नजदीकियां खलने लगती है। अब काजल की आंखें खुलने हसमुख उसके घर पहुंचता है।
2: बेटी अकेली बैठी हो?
3: आइए आइए, अभी अभी शॉपिंग करके आई हूँ इसीलिए आराम कर रही हूँ।
2: वैसे तो सब ठीक ठाक है ना?
3: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है।
2: वो कितना छोटा मकान था ना, सारा दिन पति और बच्चों को अपनी नजर के सामने देखते देखते बोर हो जाती होगी। ये तो कितना बड़ा बंगला है, हर आदमी का अलग अलग कमरा होगा ना, हर कमरे में एसी भी होगा, इसीलिए तो आदमी चैन से रह सकता है अकेला। बहुत शानदार बंगला है। ये टीवी इंपोर्टेड है? ये साउंड सिस्टम भी इंपोर्टेड है? यहाँ पे तो सब चीज इंपोर्टेड दिखती है। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, तुम तो सौतन भी इंपोर्टेड लाई हो। पतिदेव कहाँ है तुम्हारे, छुपा के रखे हैं?
3: वो बच्चों के साथ फैंटेसी पार्क गए।
2: जाह्नवी भी गई है? कितनी बेवकूफ लड़की है ना, पति और बच्चों को खुश रखने के लिए मामूली पार्क में जाने की क्या जरूरत है? 10,000 फेंको तो क्या बच्चे नहीं हंसेंगे, 20,000 फेंको तो पतिदेव खुश नहीं होंगे। मगर उसमें तेरी जितनी अकल नहीं है ना, वही तो। अमीर घराने की लड़की है, दुनिया घूमी है, फिर ये मामूली पार्क में क्या देखने गई होगी? कहीं ये देखने तो नहीं गई कि बच्चे झूले पे झूलकर कैसे खुश होते हैं और उनको खुश देखकर पतिदेव का मुंह कैसे खिल उठता है। चलूं?
1: काजल हसमुख लाल की बातें सुनकर सीधे बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती है और वो जैसे ही पार्क पहुंचती है देखती है कि बच्चे जाह्नवी के साथ बहुत खुश है। अब काजल बच्चों और पति पर हक जताने लगती है।
3: रोमी प्रीति चलो अपने कमरे में आके सोचो, चलो।
4: नहीं मुझे यहीं खेलना।
3: बाकी कल खेलो, चल।
5: हमें यही अच्छा लगता है माँ के पास।
3: तुम्हारी माँ मैं हूँ। मैं
5: तुम तो मम्मी हो, माँ तो ये है।
3: चलती है ये, लगा दो थप्पड़, चल।
1: लेकिन बच्चे और राज जाह्नवी के इतने आदी हो चुके हैं कि मौका पाते ही जाह्नवी के कमरे में पहुंच जाते हैं। काजल को समझ में आता है कि उसने क्या खोया, लेकिन जाह्नवी सब कुछ खोकर भी राज को पा लेती है।
4: अल्लाह

0: अब काजल फिर से अपने पति और बच्चों के नजदीकियां चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
1: कमबख्त आंखें नहीं खुली जल्दी, अलार्म लगा के कल सुबह और जल्दी उठूंगी। क्या करूं
2: जानवी, मैं जा रहा हूँ।

0: अब तक तो तुम पर तरस आता था, लेकिन अब वो भी नहीं आता।
1: इतना गुस्सा करने लायक मैंने क्या कर दिया? हाँ, क्या कर दिया मैंने? मेरे पूछे क्या किया मैंने? जवाब दो, मैंने क्या किया?
2: माँ काजल को बहुत समझाती है।
3: बहुत रुपया कमा लिया ना तूने, सारी जिंदगी खर्च नहीं होंगे, लेकिन आप उन रुपये को खर्च करने लायक जिंदगी बची है तेरे पास?
2: काजल घर आकर राज से कहती है,
1: किससे कहिए अपनी सारी दौलत वापस ले ले और मेरा पति मुझे लौट दे।
2: काजल चाहती है कि जाह्नवी घर छोड़कर चली जाए, लेकिन होता कुछ अलग ही है। करोड़ों की दौलत के साथ काजल अकेली रह जाती है।
1: मेरी

0: काजल अपना सुख चैन तलाशती हुई अपने किराए वाले मकान में पहुंचती है, जहां उसकी सहेली निशा रह रही है, जहां उसे बीते हुए सारे पल याद आते हैं। काजल जाह्नवी से राज का पीछा छुड़ाने के लिए वकील के पास सलाह लेने जाती है। ये वही वकील हैं जिन्होंने काजल और राज का तलाक करवाया था।
1: याद है मैंने तुमसे उस वक्त भी कहा था कि अपने पति से तलाक मत लो, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम अपने पति की दूसरी शादी बकायदा करवाना चाहती थी, जो तुम्हारे तलाक लिए बिना नामुमकिन था। अब भी वही बात लागू होती है। अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो पहले मौजूदा पत्नी को उसे तलाक देना होगा। क्या वो इस बात पर राजी है?
2: नहीं।
1: तो फिर तुम ही बताओ ये कैसे मुमकिन है?
2: वो तो मैं नहीं जानती। आप कैसे भी करके उस चुड़ैल को मेरे घर से निकलवा दीजिए।
1: ये नहीं हो सकता।
2: क्यों नहीं हो सकता? वो तलाक तो मैंने यूं ही दिखावे के लिए लिया था। एक तरह का समझौता किया था कानून के साथ। सच पूछिए तो अभी भी मैं राज की पत्नी हूँ।
1: नहीं, अब राज की पत्नी जाह्नवी है, तुम नहीं।
0: काजल घर आती है और जाह्नवी से बहुत उल्टा सीधा कहती है। बहस के बाद राज और रोमी प्रीति भी जाह्नवी के साथ चले जाते हैं।
2: मुझे छोड़ के मत जाओ।
0: जाह्नवी वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर रही है। अंकल बच्चों सहित राज को जाह्नवी के साथ जाने को कहते हैं।
3: परेशान मत हो बेटी, अमेरिका की सबसे पहली फ्लाइट जो है उसकी टिकट मैं बुक करवा देता हूँ। क्यों, ठीक है ना राज?
4: मेरी जिंदगी मेरे हाथों में नहीं अंकल, वो तो कब की बिक चुकी है, जैसा आप और जाह्नवी ठीक समझे।
0: इधर काजल की आंखें खुल चुकी है। काजल अपनी सारी दौलत

0: दान कर देती है और बच्चों और राज से मिलने जाह्नवी के घर पहुंचती है। लेकिन उसे वहां जाकर पता चलता है कि
1: जाह्नवी मैम साहब, राज साहब और बच्चे अमेरिका के लिए निकल गए, आप जल्दी एयरपोर्ट जाएं तो मिल सकते हैं।
0: काजल राज जाह्नवी और बच्चों का पीछा करती है।

0: और एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें मिला लेती है।
1: पापा मम्मी,
2: कोई हक जता नहीं आई हूँ, रोकने भी नहीं आई हूँ, बस एक बार तुम लोगों को देखे बिना रह नहीं पाई, इसलिए बाकी चली आई।
0: और अंत में,
3: मैं अकेली जा रही हूँ राज।
4: जानवी,
3: बच्चे और राज मेरे साथ नहीं जा रहे। दीदी, गलती दीदी ने काम की थी, उनसे भी बड़ी गलती तो मैंने की थी। प्यार भी कभी खरीदा या बेचा जा सकता है भला? ये मत समझना राज कि मेरा तुम्हारे लिए प्यार कुछ कम हो गया है। बस अब दीदी से फिर से ब्याह कर लेना। मैंने सारे जरूरी कागजात साइन करके वकील अंकल के पास छोड़ दिए हैं। मैं अकेली नहीं जा रही हूं दीदी, राज की याद अपने मन में और उसकी छवि अपने पेट में लेके जा रही हूं। ये छोटा राज जैसे ही इस दुनिया में आएगा, सबसे पहले उसकी तस्वीर आपको भेजूंगी, उसके सर पर हाथ रखे उसे आशीर्वाद दीजिएगा।
0: जाह्नवी अकेली ही अमेरिका चली जाती है, राज और बच्चों को काजल के पास छोड़कर। तो एक सुखद अंत होता है जुदाई फिल्म का। तो ये थी आज की फिल्म जुदाई, आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज्ञा दें, विद्या सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म जुदाई, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं समाचार प्रभात, बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच

0: बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार

0: प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबार

0: अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, एक महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएमएक्स 1.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
3: एफएमएक्स 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र।
4: जी हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
3: आकाशवाणी खंडवा।
2: श्रोता, हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। सुबह के 8:15 हो चुके हैं और लीजिए प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए फूलचंद्र गुजर और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं गणपति वंदना से।

0: आप सुनी रहा नीमार की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
2: कौन सा काम?
1: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
2: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
1: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
2: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
1: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
2: रोज सुनती हो तो उस पे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
1: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
2: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
1: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूं।
2: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
1: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
2: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
1: अभी।

यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोक संगीत। निमाड़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फूलचंद गुर्जर और साथियों के गाए लोक भजन।

0: निमाड़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे फूलचंद गुर्जर और साथियों के गाए लोक भजन। निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: हम हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में, सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी नगमे आपके मीते गीत कार्यक्रम में।
1: आपके मीत ये गीत।

आपके मीति गीत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ विद्या सिंह, स्वागत है आप सभी का। और हम सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद के फिल्मी नगमे। तो पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर के मधुस्वर में स्वीकार किया मैंने फिल्म से, निदा फाजली की रचना, लयबद्ध किया उषा खन्ना ने और पसंद किया आप सभी ने। शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल, खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब, मोइन छोटू और मोहम्मद हसनैन, ग्राम दीवार से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, वामिका गंगराड़े, कलनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, अलमास बानो और सबिया जईर पवार, राठौर मोहल्ला ग्राम जामली कला से मानकचंद राठौर, पुष्पाबाई, प्रियांशी और दिव्यांश, छेगांव देवी खंडवा से है अशोक वाघे, वंदना वाघे और काना वाघे, अहमदपुर खेगांव खंडवा से ही है कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली और समर, प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, खंडवा से मोहम्मद हसनैन, मोइन छोटू और फाजिल, जामा मस्जिद रोड भिकनगांव से साफिया, अरहान खोकर और अनस शिफा खोकर।

कर घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र सनमति, सनावत से है कालू सिंह बड़ोले, सीताराम हीरालाल बड़ोले, साहिल सुमन, विशाल हरिओम और भावना। पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक गोवर्धन बिहारी कालोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन केदीमुड़ा रायगढ़ से, पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी और इनके भी परिवार के बहुत सारे सदस्य श्रोताओं। टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह और इनके परिवार के सदस्य। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति, शिवसागर, संजय कुमार चौहान। नागपुर से है वैशाली, शैलेश गवहाणकर, प्रिंस, एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि, परी, प्रणीता, सिद्धांत और टुक टुक। महानगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, राही, श्रीमती सरिता, प्रणीता, अर्जुन और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद, आलिया और अयान। उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी। पोटलीकला पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार। मधुबनी बिहार से है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। तो सुनिए ये गीत जो आप सभी ने पसंद किया है।

0: भाई खंडवा वाले हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं?
1: खंडवा वाले इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि वो सुनते हैं
2: निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: समझे हैं? हाँ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

और निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के फिल्मी नगमे। तो एक बार पुनः स्वागत है आपके मिति गीत कार्यक्रम में आप सभी का। आइए अब पढ़ लेते हैं कुछ ईमेल्स। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, नेपानगर से प्रभुधार शिवदेव, शिवा बसंती बाई और गणेश, खंडवा से श्यामा भाई रायकवार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका, श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका, बुरहानपुर से के मोहन मुदलियार, आरुष आर्शिया, राजेश, शशि मुदलियार और उनके परिवार के सभी सदस्य, डेर पाटन गुजरात से धीरज वीराबारी, पालदाना का इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी और मोहम्मद रफीक मंसूरी, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, ताली नाचानी और प्रगति नाचानी, सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहित, कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी राय, हिमाक्ष, ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा कुमारी, सपना ओम सेन, द्वारकीबाई सेन, इंदौर लिंबोदी से गिरधरीलाल चौधरी, मनीषा भाई चौधरी, कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रतिमेश और पांडुरंग कुंभार, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवास अब्बासी, नवेद रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी, वाराणसी शहर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, बिबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत, जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, रतनपुर झिरनिया से जितेन सिंह, नरेंद्र सिंह, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, पलक, श्रुति, यशराज सिंह, दिव्यराज सिंह, मालोट पंजाब से है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और मैंडी शर्मा। तो सुनिए वो गीत जो हमने चुना है आप सभी की पसंद पर। इसे गाया किशोर कुमार और आशा भोसले ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, गीत लिखा अनजान ने और हम भी सुनते हैं आपके साथ ये वाला गाना।

अरे जनाब, गिले शिकवे छोड़िए और मजा लीजिए आकाशवाणी खंडवा के शानदार प्रसारण का। साथ ही अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए हमें मेल कीजिए। मेल एड्रेस तो आप सभी जानते ही हैं।

0: आपका मेल हमें मिलेगा और हम आपका पसंदीदा गाना सुनवाएंगे, तभी तो हम कहेंगे तेरा नाम लिया।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एहसास की जो जुबान बन गए,
5: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
4: आप हमारी जान बन गए।
5: सुनते रहें निवाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

तो कुछ और नगमे हैं आप सभी के लिए। ये नगमा हमने लिया है दर्द फिल्म से, नक्श लयालपुरी, नगमा निगार और तर्ज बनाई खयाम ने पसंद किया है। आप सभी ने अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया, अनासो रेहान, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हेप्पी राय, दुबिहा नेवदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल, सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमारी, गुंजेश कुमार, कुमकुम, साक्षी, अच्छेलाल, बुल्कीवाली और फलना झा, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमान और बेबी ओवी, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल और सोपान तायड़े, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरकर, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमार सरवद, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना। सुनिए ये गीत।

और ये है रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डेनी पवार, हिंगोली महाराष्ट्र से साजी बोर्ड के श्रीमती नंदना हनुमान और उत्तम जामदेड़े, डॉक्टर पीएम थांदी, बेबी वामिका और थांदी परिवार के सभी सदस्य, वाशिम महाराष्ट्र से विठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर प्रशांत।

तो दर्द फिल्म का ये गीत आपने सुना और सुनते हैं आप कार्यक्रम का आखिरी गाना। फिल्म दादा से हमने इस गीत को लिया है, यशुदास उषा खन्ना ने गाया है, उषा खन्ना का संगीत और कुलवंत जैन का रचा हुआ ये गीत है। पसंद करता है आप सभी टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, मिफ्रा नास और बेबी चाहत, डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश, गोलबाजार बक्सर से है श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद और परमानंद, सरिमपुर बक्सर से ही है आसमा खातून अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य, राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन और रोशनी, प्रियांश ये लिखते हैं साहूनगर यवतमाल से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, भाटापुरा छत्तीसगढ़ से हिमकिशर साहू, करण और चंपा, जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत कौर और लवप्रीत, धारी रानूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे और संदीप बाठे।

0: आपका दिल सलामत रहे और आप भी मुस्कुराते रहें और सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। फिलहाल इजाजत दें विद्या सिंह को, समेटते हैं आपके मीत गीत कार्यक्रम यहीं पर। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: FM एंड 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म का गाना। सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजें हैं, इरफान कामिल के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत।

0: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद फिल्म का गाना। मोहित चौहान, तुलसी कुमार और नदीम खान की आवाजों में शब्बीर अहमद के बोल थे और अमजद नदीम का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का गाना। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गाना सुल्ताना और ज्योति नूरन की आवाजों में। इरशाद कामिल ने लिखा है, AR रहमान ने धुन बनाई है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा का गाना, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया हुआ, इरशाद कामिल ने लिखा है और AR रहमान ने धुन बनाई है।

ऐसा ही कुछ लगता है अपनी साइकिल के लिए। वैसे साइकिल जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर बन जाती है अक्सर। सीखते वक्त चोट लगे या गिरकर साइकिल में टूट फूट आए, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर एक अलग ही रोमांच होता है। बचपन में साइकिल खिलौनों में सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, फिर 2-4 साल की उम्र वाली छोटी साइकिल का अलग ही आनंद होता है, और धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए भी होता है। कई लोग साइकिल से अपने काम पर भी जाते हैं। वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी और महत्व भी अब बदल गया है। अब साइकिल एक्सरसाइज के तौर पर काफ़ी प्रयोग होती है। हम साइकिल के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज ही है साइकिल दिवस। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था, और इसे मनाए जाने का ख्याल सबसे पहले आया था अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसे सिब्लिस्की को, जिन्होंने अपने साथियों के साथ साइकिल का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है, इसके लिए एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है, और इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और विशेषज्ञों की माने तो इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। साइकिल चलाने से दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है और सक्रियता बढ़ती है सोचने विचारने की, ऐसा भी कहा जाता है। तो भाई, विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ।

फिल्म खामोशियां का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। रश्मि सिंह ने ये गीत लिखा था और जीत गांगुली का संगीत था। इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: है।
1: और मैंने पूनम से शादी की, आज मेरे दो बच्चे हैं जुड़वा, लव और कुश, और मेरी एक बिटिया है। यानी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप किससे प्रेम करते हैं, मैं कहता हूँ जीवन में एक बड़ी सुंदर सी अच्छी सी छोटी सी और थोड़ी मोटी सी लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और कोई लड़की जीवन में नहीं है। ये बात दूसरी की, जो लड़की मेरे जीवन में है वो मेरी बेटी है और उसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा।
2: दोस्तों आप सोच रहे होंगे जिनकी आवाज आपने सुनी वही है आज के फनकार। अरे नहीं भाई, ये तो उनके पिता की आवाज है जिन्हें अभिनय विरासत में मिली है, जिन्होंने पाई है बहुत कम समय में ढेर सारी कामयाबी और जो है बड़ी दबंग।

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से सबको खामोश कर दिया।
1: मैं इस विशाल भारतवर्ष के प्रांत बिहार के एक शहर पटना में पैदा हुआ था। सिन्हा परिवार ने पूरी रामायण को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यानी

0: आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आज की फनकार हैं सोनाक्षी सिन्हा।
1: चमक छल्ला छल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली।
0: दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा जब अपने कामयाबी के परचम लहरा रहे थे, उन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बिटिया सोनाक्षी एक दिन उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही बड़े धमाकेदार हुई है। बहुत कम फिल्मों के बावजूद चोटी की अभिनेत्रियों में सशक्त अभिनय करने वाली अदाकारा के रूप में सोनाक्षी का नाम शुमार हो गया।

की पौध में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनमें देसी लुक भी है और पश्चिमी मॉडर्न लड़की के किरदार में भी वे खूब जचती हैं। अभिनय की बारीकी तो उनके रग रग में है। अभिनय का कौशल उन्हें अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से विरासत में मिला है। फिल्म ओ माई गॉड में इस गाने को विशेष तौर पे शामिल किया गया था और इस गाने ने खूब

9 जून 1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत हुई फिल्म दबंग से, जिसमें थे बॉलीवुड के सुपर हीरो सलमान खान, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई।

हिस्सा लिया। सोनाक्षी बड़ी उम्दा फैशन डिजाइनर भी रही हैं। उन्होंने 2005 की फिल्म दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी का सपना था अभिनय में कामयाबी और वे चल पड़ी फिल्मों की पगडंडी पर। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही उनकी झोली में कामयाबी के तमगे चमक उठे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के गाने सुन लिए जाएं। ये फिल्म है राउडी राठौड़, जिसमें उन्होंने निभाया पारो का किरदार।

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। एफएम एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 10 बजे हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश कुमार यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गांवों में किसानों को ई टोकन आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक उपयोग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर बीते दिनों व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें थीम पर आधारित इस अभियान के तहत डेंगू जन जागरूकता प्रचार रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। प्रचार रथ के माध्यम से डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव संबंधी संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में डेंगू की जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की समय पर सहायता कर उसकी जान बचाने वाले झाबुआ निवासी भावेश सोलंकी को बीते दिनों राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में जिला चिकित्सालय भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, सोनोग्राफी उपकरण क्रय करने, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी ऑडिट संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक 3 माह में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों राणापुर बस स्टैंड का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, बस संचालन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने हाट बाजार के दिनों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत कराया। जल संसाधन विभाग ने माही परियोजना की नहरों के मरम्मत कार्यों के लिए 16 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। लगभग 284 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से वर्तमान में 19,000 से अधिक किसान और करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित हो रही है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत झाबुआ जिले ने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले के सभी 6 विकासखंडों में आयोजित 559 संतृप्त शिविरों के माध्यम से 32,000 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान

प्रदान किया गया है। अभियान के दौरान आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और उज्ज्वला योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। वर्तमान में जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और पोटाश सहित विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसान ई विकास पोर्टल के माध्यम से ई कूपन प्राप्त कर अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फल एवं सब्जियों के सुरक्षित भंडारण और उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर और सुखाने के बाद ही साफ कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट कर रखें और प्लास्टिक की बंद थैलियों की बजाय नेट बैग का उपयोग करें। फ्रिज का तापमान निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने तथा सब्जियों और फलों का स्वच्छ उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण बीते दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता करते हुए कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और

के अनुसार बनाए रखने तथा सब्जियों और फलों का स्वच्छ उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण बीते दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता करते हुए कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जन जागरूकता का सशक्त मंच बन चुका है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कृषि मंडी परिसर झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय भीली बोली में गीतों और प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू व अन्य नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कार्यबल की बैठक का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस बैठक में बताया गया कि 28 जून को जिले भर में पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि इसके बाद 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। झाबुआ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख था हरीश कुमार का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, यह निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, अरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टान

0: पानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
0: जी।
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
0: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
1: जी।
0: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
0: जी।
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ, जरूर।
0: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं,
0: जी।
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
0: जी।
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी।
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी।
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी।
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से 2 दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे? देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक

0: ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
1: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
0: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: अरे, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
1: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
0: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
0: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
0: ये रीच तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
0: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
1: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
1: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
0: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे इस बार भी नहीं लगी।
7: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो, अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते

0: आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
1: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
0: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
2: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
0: आप तो काम करती है ना?
2: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
0: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
5: नहीं कटने देंगे,
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
7: गौरमा, गौरमा,
0: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
7: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
0: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
7: गौरमा,
0: हाँ,
7: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
7: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
0: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ,
7: हम सब तैयार हैं।
2: नहीं कटने देंगे,
7: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
0: ये है जंगल के उपकार।
5: मिट्टी, पानी और बयान।
0: मिट्टी, पानी और बयान।
5: जिंदा रहने के आधार।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।

0: बात होती तुम्हारी?
1: बंद करो।
0: ये क्या है?
2: अरे
0: क्या कर रहे हो?
2: मेरा मुंह के ताक रहे हो? अजय शुरू
0: करो। अरे भाई कौन है? रुको इस पर चिपक जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
2: सुनो, आगे बढ़ो।
0: अरे कहां से?
2: दो मिनट की बात मैं बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
0: छिपक जाएंगे,
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
1: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
2: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
6: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
4: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800044055 पर

हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

हम जानते हैं, तभी तो मनोरंजन का खजाना लेकर आते हैं आपके लिए। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। तो सुबह के 10:35 हुए हैं, तो बहने सुना अपना पसंदीदा नारी जगत कार्यक्रम।

स्वागत है सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम नारी जगत में। आज आपके साथ है आपकी सखी शीतल बाहेती। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। सखियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आने वाली 5 जून को हम हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण यानी हमारे आसपास का वातावरण, जैसे वायु, भूमि, जल, वन, पेड़ पौधे, फल फूल, जीव जंतु, पक्षी, समुद्र और उसके अंदर रहने वाले जीव। यही नहीं बल्कि नदी, झरने, सागर, पर्वत और जलवायु के सूक्ष्म तत्व भी पर्यावरण को निर्मित करते हैं। साथ ही हमारी पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्यदेव और संपूर्ण ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड भी पर्यावरण में आते हैं, और ये सब हमारे जीवन, अस्तित्व और विकास के लिए अनिवार्य है। सखियों, ईश्वर ने पर्यावरण की ऐसी अनूठी रचना इसीलिए की थी ताकि समस्त प्राणी जगत इस पृथ्वी पर सुख शांतिपूर्वक रह सके। सखियों, हमारी भारतीय संस्कृति में भी प्राचीन काल से ही वृक्ष जैसे कि पीपल, तुलसी, नीम, आम, आंवला और वट वृक्ष को पवित्र मानकर उनकी पूजा होती है। जल, वायु और अग्नि को देवता मानकर उनकी उपासना की जाती है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियाँ पूजनीय होने के साथ साथ हमारी सभ्यता और आस्था की वैभवशाली प्रतीक है। धरती को भी हमने माता का स्थान दिया है, लेकिन आज के समय में हमने अधिक सुख सुविधा पाने की लालसा में और अपने उपभोग की पूर्ति के लिए प्रकृति का ही संतुलन बिगाड़ दिया है। आज प्राकृतिक संसाधनों के शोषण की प्रक्रिया तेज होने से वायु, भूमि, जल सभी प्रभावित हुए हैं। सखियों, आज धरती को बचाने के लिए जरूरी है वृक्षारोपण। हम देखते भी हैं कि कई बार वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं, तो सखियों, सही मौसमी परिस्थिति के साथ साथ यह ज्ञान भी आवश्यक है कि कब पौधों में कितनी सिंचाई करना है, कब खाद डालना है, जिससे कि पेड़ पौधे सही तरीके से बढ़े। साथ ही सखियों, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए मिशन लाइफ चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपनी दैनिक जीवन शैली में पर्यावरण अनुकूल आदतों को शामिल करके जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना और पृथ्वी को बचाना है। सखियों, यह मिशन मानता है कि जलवायु परिवर्तन केवल सरकारी नीतियों से नहीं सुलझ सकता, बल्कि इसके लिए जन भागीदारी भी जरूरी है। यह 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के सिद्धांत पर काम

0: करता है, जिसका अर्थ है कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। सखियों, यह अभियान हमारे दैनिक जीवन के 7 महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है, जिसमें कि ऊर्जा बचाना, पानी बचाना, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का त्याग, सतत खाद्य प्रणालियां अपनाना, अपशिष्ट यानी कचरा कम करना, ई कचरा कम करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना शामिल है। और सखियों, स्वस्थ जीवन शैली के लिए जरूरी है व्यायाम, और हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है साइकिल चलाना। सखियों, हम आपको बता दें कि आज विश्व साइकिल दिवस भी है। आज ही के दिन यानी 3 जून 2018 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा विश्व साइकिल दिवस घोषित किया गया था। सखियों, साइकिल सबसे सस्ता वाहन है। इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की बचत के साथ ही यह पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित है और एक्सरसाइज के लिए भी बेस्ट है। रोज करीब 30 मिनट साइकिल चलाने से फैट जल्दी कम होता है, बॉडी फिट रहती है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और उम्र बढ़ने पर घुटनों में दर्द भी नहीं होता है और दिमाग भी एक्टिव रहता है। तो इसके लाभ लेने के लिए आप भी साइकिल चलाना शुरू कर सकते हैं। और अब सखियों, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम इस विषय पर सुनते हैं वार्ता। वार्ताकार है हमारी सखी मीना चौरसिया। सखियों, हम आपको बता दें कि हमारी ये सखी भी पर्यावरण प्रेमी हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में तो ये भाग लेती ही है, साथ ही इन्होंने अपने घर की छत पर गार्डन भी बना रखा है और ये खुद पौधों को बीज डालकर उनको तैयार करती है और जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो ये पौधे वितरित भी करती है। तो आइए सुनते हैं इनके विचार इस वार्ता के माध्यम से।
1: सखियों, आज हम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, इसमें वायु, जल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धरती शामिल है। अगर हम अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। संरक्षण से संबंधित कुछ विषय जिस पर हम वार्ता करते हैं। सखियों, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए एक विषय और है, जलवायु परिवर्तन, वो उसको प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलवायु परिवर्तन को मानवता के सामने सबसे बड़ा स्वास्थ्य का खतरा बताया है। इसमें कहा गया है कि तेज बारिश, लगातार बाढ़ आना, जंगल की आग और जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा पड़ जाना पहले से ही स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रहा है और यह विश्व स्तर पर भारी पीड़ा, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, मौतों और विस्थापन का कारण बन रहा है। सखियों, हमने देखा कि बढ़ते तापमान से संक्रामक रोग, हीट स्ट्रोक, ट्रामा और यहाँ तक कि अत्यधिक गर्मी से मौत भी हो रही है। WHO ने यह भी कहा है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी फसल की विफलता दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुपोषण और अल्प पोषण को बढ़ावा दे रही है। ये हम भी देख रहे हैं कि ये जो जहरीली हवा है इससे प्रदूषण लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है और यदि सखियों हमने इसे अनियंत्रित छोड़ दिया तो जलवायु संकट पिछले 50 वर्षों में विकास और गरीबी में कमी के मामले में हुई प्रगति को पहले की तरह ही कर देगा। वहीं हमने देखा कि WHO के अनुसार आबादी के बीच और भीतर मौजूदा स्वास्थ्य असमानताएं आ रही है उसमें व्यापक बनने की संभावना है। ये सारी चीजें हमारे सामने हम देख रहे हैं तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के एक्ट नाउ अभियान के अनुसार हम में से हर कोई ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने और अपने ग्रह की देखभाल करने में मदद कर सकता है। ऐसे विकल्प चुनकर जिससे पर्यावरण पर कम हानियां पहुंचे, उसका समाधान का हम हिस्सा बन सके और परिवर्तन को प्रभावित कर सके, कुछ ऐसे हम कार्य कर सकते हैं जिसकी संयुक्त राष्ट्र सिफारिश भी करता है। हम क्या कर सकते हैं, उसमें अधिकांश बिजली और हीटिंग समाधान अभी भी कोयला, तेल, गैस द्वारा संचालित है। हवाई जहाज और कारें भी ज्यादातर ईंधन पर चलती है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए घर पर हम लोग कम ऊर्जा का उपयोग करें और वायु और सौर ऊर्जा पर ध्यान दें और कम ड्राइव करें। जलवायु पर प्रभाव को कम करने के लिए पौधे आधारित भोजन खाएं, जो बचा है उसका उपयोग करें, स्थानीय और मौसमी खान पान की चीजें खरीदें और जो भोजन बच जाए उसे खाद के लिए इस्तेमाल करें। ये कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं और पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है। पेड़ लगाने से वातावरण में ठंडक आती है, वायु शुद्ध होती है, कार्बन का अवशोषण होता है, ये

0: मिट्टी को बांधने का काम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग रोकते हैं, पक्षियों को आसरा देते हैं, छाया देते हैं, बाढ़ आने से खतरों को रोकते हैं और मिट्टी को बहाने से भी रोकते हैं। मैंने भी अपनी छोटी सी वाटिका में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए हैं, उनके बीच में मैं बैठकर योगासन करती हूँ, ध्यान करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। अपने सखियों को भी मैं पेड़ पौधे वितरित करती हूँ और एक पौधे से अनेक पौधों को मल्टीपल करती हूँ। हम लोग शहर में कई ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें स्टॉल लगाकर निःशुल्क पौधों को वितरित करते हैं। घर में भी मैं सब्जियों के कचरे से जैविक खाद बनाने की कोशिश करती हूँ और सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखते हैं। यदि हम घरों में एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज आदि का उपयोग करते हैं तो आवश्यकता अनुसार उनका टेम्परेचर रखें ताकि हम बिजली की बचत कर सकें। कितनी बार अनावश्यक रूप से हम स्विच को चालू रखकर छोड़कर चले जाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं। ऊर्जा के विषय में यदि हम बात करें तो हमें पैनल ऊर्जा या सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना चाहिए। इसके अलावा बारिश के पानी को तालाब जैसी जगह पर इकट्ठा करें, पौधों और खेती में ड्रिप सिस्टम को काम में लें और बड़े वाहनों को धोने के लिए हम बाल्टी का प्रयोग करें। हम देखते हैं कि कहीं शादी और पार्टियों में अनावश्यक रूप से लोग खाना और पानी को बर्बाद करते हैं। घरों में भी हम सब्जियों और अनाज के धुले हुए पानी से गमले और क्यारियों को बढ़ा सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के वर्तमान में बहुत से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम पानी की बचत कर सकते हैं। बारिश के समय छत का पानी हम पाइप द्वारा जमीन में उतार सकते हैं, गड्ढों में भी पानी को हम उतार सकते हैं। तीसरा, यदि देखा जाए तो प्लास्टिक जो अभी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नष्ट करता है, इससे पालतू पशु और वन में रहने वाले जीवों को खतरा बना रहता है। अधिकतर प्लास्टिक उन रसायनों से बने होते हैं जो पृथ्वी को गर्म के होने का कारण बनते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवों के लिए खतरा पैदा करते हैं। जीवों में प्लास्टिक निगलना, दम घुटना या प्लास्टिक प्रदूषण के बीच में फंसना एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। प्लास्टिक में कार्बनिक घटक होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, इसलिए प्लास्टिक रेप बॉक्स की बजाय पुनः उपयोग में आने वाले स्टोरेज हमें चुनने चाहिए। बोतल बंद पानी खरीदना हम बंद करें और अपने बैग में एक पुनः उपयोग में आने वाली बोतल रखें, इससे प्लास्टिक और पैसे दोनों बचेंगे। प्लास्टिक बैग की जगह हम जूट और कपड़े के झोले काम में लें। प्लास्टिक बोतल की जगह हम कांच और मेटल की बोतल को काम में ले सकते हैं। कचरे को पर्यावरण के लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं? हम घरेलू कचरे का 75% हिस्सा रिसाइकल कर सकते हैं। खाली मैदान या लैंडफिल में कचरा फेंकना अंतिम विकल्प नहीं है, क्योंकि सखियों कुछ पदार्थ को तो अपघटित होने में महीने लगते हैं। हानिकारक ग्रीन हाउस गैस मीथेन निकलती है जो गर्मी बढ़ाती है और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाती है। कूड़ा फेंकने की बजाय उसका पुनर्चक्रण सबसे आसान तरीका है। आजकल कई उपयोग ऐसे हैं जो प्लास्टिक, धातु, कागज और अन्य सामग्रियों के लिए भुगतान करते हैं और उनका उपयोग में लेकर फर्नीचर और घर बनाने के लिए कई ऐसी उपयोगी चीजों को उसमें यूज में ले लेते हैं। सरकार द्वारा डस्टबिन भी हमारे यहाँ तीन प्रकार से, रेड और येलो, ताकि हम कचरे को अलग अलग वर्गों में बांटकर पुनः चक्रण किया जा सके। वार्ता को आगे बढ़ाते हुए सखियों में यही बोलना चाहूंगी कि खाद बनाना महंगा नहीं, उसमें नाइट्रोजन और कार्बन जैसे भरपूर पदार्थ होते हैं और यही खाद हम घर पर बना सकते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हरे होते हैं, ये हरी सब्जियों या सड़े गले पत्तों से, और जबकि कार्बन युक्त पदार्थ सूखे पत्तों से और लकड़ी के वेस्टेज से बन जाते हैं। कचरे को रिसाइकल के लिए डब्बे में हमें इकट्ठा करना है, उसमें सिरका और बेकिंग पाउडर हम अवश्य मिलाएं ताकि उसमें फफूंद और कीड़े मकोड़े नहीं लगे। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना यानी उनके तत्वों जैसे जीव जंतु, जल, मिट्टी, वनस्पति की रक्षा करना। आज के समय में बढ़ता हुआ प्रदूषण, जंगलों की कटाई, बड़े बड़े उद्योगों का लगना, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। कि पर्यावरण हमारा जीवन दाता है और उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ पर्यावरण अति आवश्यक है। अतः इससे संबंधित मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि उठो साथियों, उठो सखियों, मिलकर हाथ बढ़ाए, प्रदूषण मुक्त वो सारी धरती ऐसा पर्यावरण बनाए। उठो साथियों, चलो साथियों, मिलकर हाथ बढ़ाए, पेड़ पौधे से हमें मिलती ऊर्जा और मिलते फल और फूल, जल थल नभ है सब परेशान, प्रदूषण बढ़ा रहा अपनी पहचान, बदले हम अपनी आदतों को यह समझे हर इंसान, स्वच्छता बने हमारी पहचान, धरती माँ की बनी रहे शान। धन्यवाद।
1: सखियों, अभी हमने सुनी वार्ता पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और सखियों, अब बारी है आज की रेसिपी की। सखियों, अभी मार्केट में भरपूर मात्रा में आम आ रहे हैं, तो आज आपको आम पापड़ बनाने की रेसिपी बता देते हैं, जो कि हमारी बचपन की यादों में भी शामिल है और इसे बनाना भी एकदम आसान है। तो आइए आवश्यक सामग्री नोट कर लीजिए। इसके लिए आवश्यक सामग्री है आम 1 किलो, शक्कर 1/4 कप, छोटी इलायची 4 और घी 1/2 छोटा चम्मच। अब सबसे पहले आम को धोकर छीलकर टुकड़ों में काट लें। अब आम के टुकड़े शक्कर इलायची मिलाकर मिक्सर में बारीक पीस लें और इस घोल को किसी बर्तन में डालकर गैस पर पकने के लिए रख दें। सखियों, उबाल आने के बाद चमचे से चलाते हुए 10 मिनट तक इसे पका लें और फिर किसी प्लेट या ट्रे में घी लगाकर इस घोल को डाल दें और इस घोल को डालकर पतला फैला दें। अगर सखियों तेज़ धूप है तो शाम तक यह सूखकर तैयार हो जाएगा, और यदि नहीं भी सूखा हो तो जाली से ढककर रखें, हवा में भी ये दूसरे दिन तक सूख जाता है। सूखने पर चाकू की नोक की मदद से इसे निकाल लीजिए। और सखियों, इसी को यदि हम चटपटा बनाना चाहते हैं तो जब हम रस उबालते हैं उसे गाढ़ा करते समय काला नमक और 6 से 8 काली मिर्च पीसी हुई इसमें डाल दें, और शेष विधि वैसी ही है जैसे अभी आम के पापड़ की हमने बताई। तो सखियों, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब सुनते हैं ये गीत।

और सखियों, अब आज के नारी जगत कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। आज्ञा दे अपनी सखी शीतल को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे नारी जगत कार्यक्रम FM एंड 101.2 MHz पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।
1: देश की सुरीली धड़कन, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे हिंदुस्तानी गज़ल एल्बम से निर्मला देवी की आवाज़ में, शकीक बदायूनी ने इसे लिखा और ख़ान साहेब अब्दुल रहमान ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगली नज़्म, जो कि है उर्दू गज़ल एल्बम से, बेगम अख्तर की आवाज़ में है और जिगर मुरादाबाद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे मुकेश गजल्स एल्बम से, मुकेश की आवाज़ में जान निसार अख्तर के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस नगमे को। आइए सुनते हैं अगली गजल जो

होगी हिंदुस्तानी क्लासिकल गज़ल एल्बम से तलत महमूद की आवाज़ में एहसान मीरती के बोलों के साथ चित्ता रॉय का संगीत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि हिंदुस्तानी गजल्स एल्बम से लिया गया है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। सबा अफगानी ने इसे लिखा और इकबाल ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे मिराज़े गज़ल एल्बम से आशा भोसले गुलाम अली की आवाज़ में। नासिर काज़मी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

हम थे खामोश एल्बम से सुन रहे थे उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ में सिया सचदेव के बोलों से सजे हुए देव बसक ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये है एक प्यारा सा नगमा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि पृथ्वी गंधार की आवाज़ में है।

आज के कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म एहसास एल्बम से तलत अजीज की आवाज में, सूरज सनीम के बोल और ललित सेन के संगीत के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत, आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय

0: है अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का पहला गीत देवदास फिल्म से। गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन का है संगीत।

0: बम्बई का बाबू फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला नगमा, जो कि है फंटूश फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, और हम आपसे बता रहे थे कि आज हम याद कर रहे हैं यादों की महफिल में सचिन देव बर्मन को, तो उनका ही संगीत है।

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव बर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने ही।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम सजा कर लाए हैं सचिन देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देव बर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो कि है अनुराग फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने से गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देवबर्मन का संगीत।

हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से, गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव वर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत। प्यासा फिल्म से गीता दत्त, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ है। सुनते हैं इसके कुछ अंश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अब हम चलते हैं उस सफर की ओर जो बहुत सुरीला है और जिसे हम कहते हैं सुरीला सफर। मैं हूं विधि प्रवीण जैन, नमस्कार स्वीकार। आज इबारत लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वह इबारत हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इबारत बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़े दिल की है। इबारत कुछ ऐसा कहती है कि दिल जब यह पूछता है कि वो कौन है, तो बरबस ही सामने वाले का अक्स आंखों में उभर आता है। फिर कोशिश होती है कि पहले खत के लिए, और दिल दलीलें देता है कि इशारों में उधर से कुछ कहा तो है, और कहीं एहसान दिल पर हो गया तो क्या ही बात है। और अगर उनकी नज़रों की इनायत ना हुई तो कयामत ही आ जाएगी। बस ये छोटी सी इबारत उन क्षणों की, उन लम्हों की, जिन्हें हम बहुत प्यार से जीते हैं। अब इसके लिए हमारे श्रोता क्या कहते हैं, तो वह लिखते हैं कि आज की इबारत प्रेम के शुरुआती अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए दिल की बेहद खूबसूरत, नाजुक और कश्मकश भरे एहसास है। ये मोहब्बत के उस दौर का आईना है जब प्यार का पहला खत अभी कागज पर नहीं, दिल की धड़कनों में लिखा जा रहा है। जब किसी का चेहरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में छाया है। एक मीठी सी जंग शुरू है। हर इशारा एक पैगाम है, हर ख्याल एक उम्मीद है, और मन उस पहले खत के अल्फाज तलाशने लगा है जो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत बन सके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में प्रणय के सुनिश्चय से संबंधित दिल के उहापोह का एक अच्छा

खासा मनोविश्लेषण किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिल की दृढ़ता सामने वाले की नज़र से गुफ्तगू के आधार पर न केवल टिकी हुई अपितु परिवर्धनशील भी है। इस दृष्टिकोण से आज की यह गद्यमयी इबारत वास्तव में इबारत करने योग्य है, इबादत करने योग्य है, और यह लिखते लिखते वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के छोटे से गद्यांश से दिल में उमड़ रहे प्यार मोहब्बत के भरे बहुत ही गहरे भावों को भरा गया है। मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जुड़े छोटे छोटे और नाजुक इशारों से किया जाता है। आंखों की खामोश भाषा और प्यार के नजराने आपके जज्बातों को बिना कहे भी बयां कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, प्रेम का इजहार आंखों के इशारों से लेकर खत लिखने तक की यात्रा में बहुत उहापोह कश्मकश और मन में एक डर समाया होने वाली श्रृंखला रहती है। प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम दृष्टि मिलने यानी नयनों के बाण से होती है। बहुधा प्रेयसी की कटीली तिरछी चितवन से प्रेमी घायल होता है और प्रेम अंकुर फूट पड़ता है। इसके बाद मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग या लगाव को चेहरे के हाव भाव से लज्जा शर्म और रोमांच के माध्यम से समझा जाता है और एक दूसरे के इशारों से अपने हृदय की बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक अनजान व्यक्ति से कुछ लगाव हो ही जाता है तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है उस शख्स में जो उस ओर खिंचा चला जाता है। कुछ चिट्ठी पत्री लिख कर देखूं क्या उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, और अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा, मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी और बस सुनने में मज़ा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की

तो क्या होगा, मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी? हमारे गौर श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी, और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी, और बस सुनने में मज़ा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की जो इबारत है, आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इज़राहे मोहब्बत होती है। बस उससे कहने की देर होती है, पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी, आपके पति के साथ हुई हो, या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो, तो बताइएगा ज़रूर ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए। तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना, बड़ा बड़ा ख़तरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी। और बस इतना बता दीजिए, ये जो गीत आप सुन रहे हैं, इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज़ किसकी है?

अब दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है, और ये गीत हमने लिया भीगी रात से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है रोशन का। हमने आपसे पूछा कि ये मीठी सुरीली सी आवाज़ कौन सी है, तो ऐसा कौन होगा जो ये आवाज़ नहीं पहचान पाएगा। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पहचाना इस बात को, और बताया कि आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। अब ये इज़राए मोहब्बत जो है, आप सबको प्यार हुआ ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात के उत्तर देना शुरू किए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रफ़ी की भी आवाज़ भीगी रात, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार नज़र आते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ कुछ प्रेम कहानियों का आगाज झगड़े से भी होता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि कई लोग झगड़ते रहते हैं और फिर बाद में प्यार करने लगते हैं। ये भी बड़ा रोमानियत भरा एहसास है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हम बुजुर्गों को जवां बना दिया है, कुछ गुलाबी जख्मों को हल्के से सहला गया। अब देखिए, इस बात को अगर आप ये समझें कि जीवन जो है वो शरीर बड़ा होता है, मन और आत्मा तो वही रहती है, तो उसी मन के लिए सहलाने के लिए और उसी मन की प्यारी बातों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमने इन जज्बातों से संजोया है। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा कि करोड़ों लोगों की पसंदी आवाज़ अनमोल रत्न रफ़ी साहब की है। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे हुआ तो हमारे साथ भी खुल के बता दें ना, मत डरिए, बताना है तो बता दीजिए, अब तो समय निकल चुका है, अब क्या क्या ही फर्क पड़ने वाला है। बट पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे ज़माने में प्रेम विवाह तो कोई सपना भी नहीं दिखता था। हाँ, अरेंज मैरिज में बगल में बैठी पत्नी के पैर की उंगलियां बस दिखाई पड़ती थी, वह भी साथ में बैठी नाई की पत्नी झट से ढक देती थी, तो इशारे भिसारे क्या करते। जी, शायद आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को देखा होगा। यानी कितनी आरजू होगी ना कि जिसके साथ विवाह हो रहा है कम से कम उसका चेहरा तो देख लें, पर वह भी एक समय की बात, कितनी अच्छी एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना कोई उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई इनकार आ जाए तो बस इस बात का डर रहता है, इसीलिए कई लोग इजहार नहीं कर पाते। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, लेकिन राजे दिल कहने की दोपहर नहीं है, कहीं डंडे खिलवाने का इरादा तो नहीं है। देखिए, अब अगर वही हैं तो फिर कह सकते हैं, अगर दूसरी हैं तो कहना बनता नहीं है। जी चलिए आज, हाँ जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज सबके ये छुपे हुए राज रहस्य जानने आई हैं। जी, जानना बनता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये केवल किसी एक तरह का ही हो। हमें भी एक बार वो बड़ा सुंदर सा एक कार्यक्रम आता था, उसमें एक संचालक हुआ करते थे, वो गायक हैं सोनू निगम, उनको देख

हमें भी मन करता था कि इनको एक हम पत्र लिखें, और एक बार हमने लिखा भी और बाकायदा लिखा, सोनू भैया आप ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो भी लिखना था वो लिख के उनको भेजा। एक लंबे अरसे के बाद उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी हुआ। तो ये प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, ये प्यार, ये पहला खत कैसा भी हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमें वो मिले हैं पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में हमें भी प्यार करते हैं या नहीं, पर हमने सोच लिया कि वो हमें प्यार करें या ना करें, बाकी आगे देखो क्या होता है। जी बस, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी वो उम्र जब मेरी जॉब लग चुकी थी, शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी। वाकई में मेरी आंखों के सामने बरबसी अक्स उभर आते थे, फिर माता रानी का चमत्कार हुआ। पता नहीं कैसे मेरी पूज्य सासू माँ ने मुझे लायक समझा, मुझे पसंद किया और सपनों की रानी से मुझे मिला दिया, जिसके लिए मैं अपनी पूज्य सासू माँ का ता उम्र एहसानमंद रहूँगा। रहना ही चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी आपको दी है और इतनी प्यारी बेटी, लाजवाब बेटी आपके साथ है उनकी। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और उनमें से लिखा बहुत प्यारी बात के लिए है कि हाँ, ये बहुत अच्छी इबारत है कि हे साइकिल, अपनी इनायत आपके करम कैसे भूलेंगे हम। आज विश्व साइकिल दिवस है तो उससे जुड़ा हुआ ये हमारे बीच में एक संदेश आया है कि ये साइकिल, आपकी इनायत आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम। अगर उस जमाने में ना होती तुम तो हमारे फूट जाते कर्म, खतों के इंतजार में रहते हरदम। जब बजती पोस्टमैन की साइकिल की घंटी, दरवाजे दौड़े दौड़े चले जाते थे हम, खत पाकर हाथों में खुश हो जाते थे हम, बोल उठते थे शुक्रिया शुक्रिया हम, अगर हमारा खत ना होता तब हो जाते थे बेदम। बहुत बढ़िया बात है, और ये खत कितने काम की चीज़ रही है उस समय, ये बात तो हम भी जानते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि कई सारे जो प्रेम हैं, उस प्रेम के बारे में जैसे इबारत रूपी दो दिलों की रूहानी मोहब्बत, नज़ाकत इनायत और तड़प का जिक्र है। जहां दिलों पर हुकूमत करने वाली मोहब्बत अगर रुस्मा हुई तो कयामत ही कयामत है। खतों और इशारों की दलीलों से दिल को सहलाने वाले प्रेमी युगल के प्रयास दो दिलों की विरह, बेसब्री और वेदना को चित्रित करता है। रूहानियत भरी इश्क में एहसान की गुंजाइश नहीं, ये जज्बा एक दरिया है जहाँ दो दिल अक्सर बह जाते हैं। आज के सात्विक सुरीले प्रेम सफर का आनंद का इंतजार है। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस बार भी बड़ा सरल सा प्रश्न है। जैसे मैंने अपनी पहली खत के बारे में बता दिया, जिसके लिए लिखा था, दिल किया था, शायद आपका भी कोई खत हो जो आपने पहली बार लिखा था, बता दीजिए, डरिए मत, कोई पिटाई नहीं करने वाला। और आप ये बता दीजिए बस, अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं ये किस फिल्म का है, बताइएगा जरूर।

ये खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो आप सब बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी लिख देते हैं, और आपने लिखा कि ये फिल्म अनजाना है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी लव मैरिज है, कुछ 56 साल पहले मैंने शादी की थी, घर वालों से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि ये ज़माना था जिसमें प्यार शब्द बोलना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं तो आज भी मानती हूँ प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम एक शुद्ध भावनात्मक अनुभव है जो किसी भी उम्र में

हो सकता है। इन्होंने जवानी या बुढ़ापा दोनों का जिक्र किया है। यह दिल से दिल का जुड़ाव है जो समय या सामाजिक बंधनों से नहीं बंधा है। प्यार जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। असली प्यार वह है जहाँ इंसान बिना किसी डर या दिखावे के स्वीकार कर सके। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता लिखते हैं, नहीं बताएंगे विधि जी आपको और सभी को, पर बहुत सारी बातें हैं पर दिल में रहें तो ज़्यादा अच्छी हैं। बस इतना कहेंगे कि कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, हमारे नटकट से कान्हा जी से भी प्यार का इजहार एक माँ के रूप से भी कुछ कम नहीं है। उसमें कभी कान्हा जी को डांटना, कभी नज़र उतारना और कभी कभी उनको क्या खाना है, इस बात का भी एहसास, कितना सच्चा प्यार है ना ये। हाँ, सच बात है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसी पेज पर हमारी बहन ने लिखा है कि उसे वापस लिख रहा हूँ कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ एहसास ही मोहब्बत है और यही हाल पहले लिखे खत में नज़र आता है और वो खत चाहे किसी को भी लिखा हो। सही बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो सगाई होने पर पत्नी रानी को खत लिखा, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है। क्या बढ़िया खूबसूरत, आप तो गीतों के साथ बात कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमने खत स्कूल टाइम में लिखा था, स्कूल को ट्यूशन क्लास लगने जाते थे तो हमने लिखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि चर्चा हमारे प्यार का हर आमो खास में था, पर वो ना समझ सके जो दिल के पास था। हमने तो अपनी हर दुआ उनके नाम कर दी, शायद उनकी तकदीर में कोई और ही खास था। क्या बात है, बढ़िया शेर है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया कि वैसे तो प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है, पर मुझे जॉय मुखर्जी बहुत पसंद आती हैं। शादी वाला प्यार नहीं था लेकिन बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम जॉय ही रखा ताकि मैं जॉय मुखर्जी को हमेशा अपनी यादों में जिंदा रख सकूँ। टीवी का एक कार्यक्रम आता था सुरभि, जिसमें रेणुका शाणे जी की हंसी भी मुझे बहुत पसंद थी। ये भी तो एक प्रेम का रूप है ना। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारी भी सगाई के 2 साल बाद शादी हुई। इस बीच हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी भी घूंघट में हुई, सीधा रूम में दीदार हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को खत लिखते रहे। उस समय फोन से ही बातें होती नहीं थी, मात्र एकमात्र सहारा खत हुआ करते थे। उसके बावजूद भी इतना प्रकार की आज तक मजबूत डोर बंधी हुई है। यह होती है दिल से दिल का मिलन, लेकिन आज वह बात नहीं है। जो राजा न रानी दुनिया हो गई बड़ी सयानी, कब रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शादी की तो शादी के पहले मैंने अपने जीवन साथी को देखा नहीं था। माँ पापा ने रिश्ता पसंद करके तय कर दिया था, हमने केवल फोटो देखा था और 1990 से लेकर आज तक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सदा चलता रही है, प्रार्थना हमारे ईश्वर से है। हमारे श्रोता ने लिखा, गांव की एक लड़की को दो छोटे भाई के जरिए लेटर लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भाई ने उसके हाथ में खत दिया तो गुस्सा हो गई, बोली आगे से ऐसे खत लिखा तो खैर नहीं है, वैसे मुझे देखने के लिए हमारे घर टीवी देखने आती थी। ये बात 1992 की है। बढ़िया है। हमारे श्रोताओं ने बहुत, एक और बात मेरी जो मैंने बात कही थी उसके लिए भी उन्होंने सराहा है कि हाँ ऐसा सबके साथ हुआ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इश्क की उस नाजुक दहलीज को दिखाती है जहाँ एक बेइंतहा उम्मीद है, दूसरी तरफ कोने का उतना बड़ा डर। दिल पूरी तरह उस इंसान के फैसले पर निर्भर हो जाता है, जहाँ उसका हाँ जिंदगी को जन्नत बना सकता है और ना कयामत ला सकता है। सही बात है। हमारे श्रोता लिखता है, किसी पर दिल आ जाए तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है, खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। आप लिखते हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, आज की जनरेशन का प्यार मोहब्बत का इजहार डिजिटल और क्रिएटिव है, तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसके लिए सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप और पर्सनलाइज्ड जेस्चर बढ़ चला है। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं और इन्हीं बातों के बीच में हमारे श्रोताओं ने हमें और भी संदेश भेजे हैं। उन संदेशों में खत के लिए बात कही है। खत सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि दो दिलों के जोड़ने का एक पुल है और उन्हें गहराई तक पहुंचाने वाला सुकून है। यह एहसास का जरिया है जो दूरियों को मिटाकर शब्दों के जरिए जज्बातों को हमेशा के लिए अमर कर देता है। खत के शब्द लिखने के लिए रूह को पढ़ने वाले तक पहुँचते हैं, यह अनकहीं बात बयां करने का सबसे अच्छा साधन है। यह बिल्कुल सही बात है। शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते जब खत लिखने बैठो, इसलिए दिल इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता है। और एक तो लिखते हैं कि प्यार का पहला खत लिखना आसान नहीं होता, अल्फाज कम, धड़कने ज़्यादा शामिल होती हैं, कलम कागज़ पर चलती है मगर असल में दिल अपनी बात कह रहा होता है। हर्ष लफ्ज़ के साथ यह डर भी होता है, कई भावनाएँ अधूरी ना रह जाएँ, हर पंक्ति में उम्मीद भी।

शायद सामने वाला उन्हें अनकहे जज्बातों को पढ़ ले जिसमें शब्द पूरी तरह बयां नहीं कर पाते। ऐसे ही कई सारे संदेश आए हैं, पर ये गीत सुनवाना बनता है आपको जब आपका, जैसे एक जिक्र किया गया कि वो फिल्म देखने हमारे घर आती थी, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है ना, कोई बड़ा करीबी सा। बताइए ये किस फिल्म का गीत है?

लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे अभी। और हमने आपसे पूछा था, बस इस फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही बताया, अनीता फिल्म का ये गीत हम सुन रहे हैं। और हम बात कर रहे थे प्यार के इजहार की या फिर खत लिखने की, प्यार किसी से भी हो सकता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब मेरे बीए का एग्ज़ाम था तो देकर अभी निकला ही था तो तुरंत विविध भारती से जुड़ गया, और ये भी तो एक प्रेम का रूप है श्रोताओं के लिए, विविध भारती के लिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से ये सारे उत्तर देते देते एक और बात लिखी कि मैंने एक नाटक देखा था डोली तेरे अग्निजीस में, जिसमें सच्चा प्यार करते हो, सच्चा मान लेते हो, मिल जाता है, पर मुझे लगता है कि सच्चे आशिक को सजा मिलती है, पाई हुई मंजिल भी छूट जाती है। हो सकता है, देखिए हर किसी का अलग अलग बात होती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दूसरा खत प्रेमिका को लिखा था जो आज सरकार होम मिनिस्टर बनकर हम दोनों का जीवन जिस पथ पर सुगम करने में तुला हुआ है। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ में किया, उनको सुनकर मुझे कुछ मुझे होने लगता था। और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे, मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी और जब वो उनको देखती तो खुशी होती थी। पर ख़त तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता, आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को एक खत लिखकर उनको दिया था, पता नहीं उन तक पहुंचा या नहीं। उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है, घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, पोस्टकार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक ज़माने में खूब लिखे हैं और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा, प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना, अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारी श्रोता लिखते, कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज़ पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसे भी कहानियाँ बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी, तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाऊँ उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान, वो भी। लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी, वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा, ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहाँ डाक किया सब चिट्ठियाँ डालकर जाता है। हमने पढ़ा सब, जितने दोहे और शायरी उसे आते थे उसने लिखा था, नीचे आपकी रानी लिखा था। फिर हमने उनके गांव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी, फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं और अगला गीत बस वही है खत के बारे में। लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं और पहले का ज़माना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए, तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है, जब दूर रहते हैं घर से तो हम लिखते ही हैं खत, ऐसी ही बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है।

और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा, खत तो लिखा लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था, जरूर से साझा कीजिएगा।

0: ये खत दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिरी अंतरे में आशा भोसले गा गा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही हैं, आशा पारेख अभिनय कर रही हैं, आनंद बख्शी के गीत हैं, लक्ष्मी प्यारे का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज़ से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है। हाँ, आजकल ये बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज़ में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना ज़रूर जानना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है, कि पालेना ही प्यार है। प्यार महसूस किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते हैं तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में दुख। जी बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया। तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाज़ों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो नहीं, रेडियो सेवा नहीं, बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज़ मुझे अपनापन और स्नेह मिला है और यही कारण है कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज़ में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ, कि उनका उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गाँवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैया थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया। फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध

0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: बस यही प्यार है आपका और हमारे बीच में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर, और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल बयां कर देता है। एक नज़र, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है। इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं। इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो जुबान कहने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प ब भ कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे। ऐसा कुछ आपने किया है क्या, उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे। आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए। और एक और चीज़ बता दीजिए, ये जो गीत है उसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए। और आपने हमारे जैसी कोई हरकत की है सीक्रेटली बात करने की तो ज़रूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में ओपी नैयर के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, SH बिहारी इस गीत के गीतकार हैं। अब इसके साथ मुझे एक चीज़ और, एक बड़ा प्यारा सा शेर याद आ रहा है जो जोश मलिहाबादी ने कहा था शायद, कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। और ऐसी ही बात अगर हो जाती है तो फिर बात क्या कहनी है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा कि 21 से 23 तक बहुत गहरा प्यार था, ये अपने दिल की बयां कह रहे हैं, और लंबे समय तक परिस्थितियां बदल गई। देखिए, कई बार प्यार हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए। और आज हम आपसे, अच्छा, हमारे श्रोता ने लिखा है, उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फन के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं। जी बढ़िया है, कहना चाहिए। और इशारों इशारों में बात थी, अच्छा मैं भी बता दूं अपना नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना। उसके बाद तो चिट्ठी पत्री खत सब लिखना बनता ही है, आपने भी लिखे हमने भी लिखे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है, कश्मीर की कली का, पंजाबी ठेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल इशारों इशारों में, रफ़ी साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, या लाड़ प्यार दर्शाता है, लेकिन आजकल पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं। तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जब हम फोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फोन नीचे रख के कॉल चल रही है, मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलती थी, फिर सो नहीं पाती थी और फोन कट जाता था। जी कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था। और चलिए, अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है, और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था। आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ, और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है, और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं। तो ये कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये लिखते हैं खुमार बारा बंकवी। और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आके दीजिएगा इस गीत के साथ।

छोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे। तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नई तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही। आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

0: साइकिल का आविष्कार 1817 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल डार्सी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले ऐसी दो पहियों वाली गाड़ी बनाई जिसे पैरों से धक्का देकर चलाया जा सकता था। बाद में पैडल, चैन और ब्रेक लगाए गए और धीरे धीरे आधुनिक साइकिल का रूप तैयार हुआ। आज दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की साइकिल बनाई जाती हैं, जैसे रेसिंग साइकिल, माउंटेन साइकिल, बच्चों की साइकिल। और ये जो साइकिल है ना, इससे नाता सबका बड़ा गहरा है। हम भारत के थोड़े से पुराने काल में जाते हैं और जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर साइकिल घर की लग्जरी हुआ करता है। यानी घर में अगर साइकिल है और रेडियो है तो आप बड़े रईस हैं और लोग उस साइकिल को बहुत सम्मान देते हैं। ये साइकिल बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि अगर इसी साइकिल में पीछे आटा चक्की लगा दी जाए और साइकिल को घुमाया जाए तो चक्की भी चलने लगती है, आटा भी पिसने लगता है और शारीरिक व्यायाम भी होने लगता है। नए आधुनिक उपकरणों में साइकिल को घरों में रख लिया गया है। ये साइकिल बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा उपकरण है जो बच्चा सबसे पहले चलाता है। और जब वह दो पैरों पर उस साइकिल को चला लेता है तो खुश हो जाता है। हालांकि माता पिता को वो जो चार पहिए, जो दो एक्स्ट्रा पहिए सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें हटाने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही हटता है बच्चा पंछी की तरह उड़ जाता है।
1: मैं

0: साइकिल बहुत अच्छी चीज है, इस वाक्य का प्रयोग कई बार किया गया। इसका कारण है इसके दो उपयोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। ये ट्रैफिक नहीं करती क्योंकि बड़ी पतली सी, बड़ी सकरी सी होती है और बड़ी सरलता से किसी भी गली मोहल्ले से निकल जाती है, घर के एक छोटे से कोने में बड़ी सरलता से रख जाती है। और धीरे धीरे यह साइकिल अगर हम चलाते जाते हैं तो इससे बढ़िया व्यायाम हो जाता है। ये साइकिल बच्चों का बचपन है, जिसमें अपने पिता के आगे वाले डंडे पर बैठकर मेला देखने जाना ये भी तो बड़ा ख्वाब है ना। और उसी ख्वाब को, उसी सपने को जो पहले ही जी चुके हैं, फिर से जीने का आनंद ही अलग है। साइकिल, अगर इस सारी दुनिया में साइकिल का प्रयोग होने लगे तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगेगी, है ना। कितने सुंदर फूल आ जाएंगे और कितनी सुंदर बयार होगी, क्योंकि प्रदूषण होगा ही नहीं। नियमित साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर को मजबूत करता है, हृदय और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, मोटापा भी कम हो जाता है, और कोई धुआं नहीं निकलता तो प्रदूषण नहीं है, पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, इससे अपने देश का पैसा भी बचता है। आज के समय में प्रदूषण, ट्रैफिक, इस सबसे बचने के लिए साइकिल का महत्व अपने आप में बढ़ चुका है। कई लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो बताइए कौन कौन।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी पहले ही प्राप्त कर ली है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब सड़क निर्माण को सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखेगा। इसी सोच के साथ मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 1 और 2 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के अध्ययन दौरे पर गया। वहां टीम ने महाराष्ट्र के वित्तीय मॉडल, डिजिटल गवर्नेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को समझा। अब इसी तर्ज पर प्रदेश में 1 रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा ताकि निर्माण स्थल पर कोई घटना होने पर मिनटों में कार्रवाई हो सके। खंडवा जिले ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में देश भर में 5वां और अपने जोन में 2रा स्थान हासिल किया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें सोकपिट, रिचार्ज पिट, बोरी बंधान और कंटूर ट्रेंच जैसी संरचनाएं शामिल हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा समेत कई जिलों में इस दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विकासखंडों में पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम मध्य रेलवे भी 15 मई से 15 जून तक जबलपुर मंडल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। ये महोत्सव संग्रहालय की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 6 जून की शाम 6:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। और अब बात मौसम की। इस बार नौतपा में गर्मी की जगह आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखा। बारिश और तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया और कहीं भी हीट वेव नहीं बनी। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच कलेक्टर ने अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बारिश के पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद द्वारा 3,27,00,000 रुपए की लागत से नगर में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। शिवपुरी में प्रतिबंधित और नियंत्रित श्रेणी की भूमियों के अवैध हस्तांतरण, पंजीयन, नामांकन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिले के सभी उपपंजीयकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी

0: आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल

0: नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।

0: अमन यादव।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में पहला गीत प्यार का मौसम फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में, मजरू के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनना पसंद किया है। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने। गोला बाजार भक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, रामजी आर्य ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनना पसंद किया है बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वाकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजिदा रानी और हिना कौसर ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राजी राशि, रक्षित चित्रंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती, रेखा ऋतिक, ऋचा स्वीटी, सागर रिया, रीत, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सदस्य। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। सुनना चाहा है अभिजीत और साथियों का गाया ये दिल लगी फिल्म का गीत। समीर ने गीत लिखा है, स्वरबद्ध किया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

0: अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: इंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीत गीत आदित्य की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बरात बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, करुण रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए हैं। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
2: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो वो सजावट देख कर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक
1: है वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
2: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले
1: हैं। तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
2: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
1: विश्वास हो, सम्मान हो।
2: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती हैं और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
1: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
2: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा, विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
2: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायना रखती थी उस जमाने में, है ना।
2: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं
2: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को, कार को लेके जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
2: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं। ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है, अरबी
1: है,
2: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या है कि बनाएं क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पतिदेव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
2: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन। और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है, तो हमारी सखियां बेसन

0: कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी,
1: अरे सारा मत बताओ,
0: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तब तक एक गीत सुन लेते हैं सखियों के साथ।
1: सुन लेते हैं, तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए
0: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: और ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मंदाकिनी जी,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी,
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
1: हाँ।
0: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं।
1: हाँ।
0: ठीक है, और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता है, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल। और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है।

0: जाता है हम सबके लिए, विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं। और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी बहुत मदद होता है।
1: बिल्कुल,
0: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो हैं, कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हमें हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
1: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यावसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
0: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार, दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो हैं जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
0: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना वगैरह भी कहते हैं।
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं, ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं, चंचल, की रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं। उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती, या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई, मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूँ। और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी, और जीवन का वो आधार है।
0: क्या बात है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्म पत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने,

0: और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
1: बच्चों को दें।
0: जी
1: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथी कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं, और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
0: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम, जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी ज़रूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी।

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का कोई जब मौका मिलता है, तो उसे महिलाएं खास तौर पे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक
0: पहनावा।
1: पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घरचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल
1: जी
0: कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियाँ गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घट चोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर
0: घर
1: जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि
0: पोशाक।
1: पोशाक, और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: प्रवेश
1: करती।
0: करती है, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम
0: बिल्कुल
1: जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है। और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते
1: हैं, साइड में रख लेते हैं वो
0: जी।
1: भी, हाँ।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर। और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है,

0: तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि घरचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घरचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घरचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती हैं। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न और ये साड़ियाँ पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खासतौर पर जामनगर राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना तो घरचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घरचोला साड़ी डालती है तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घरचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़ कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है, इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
1: होता है। बिल्कुल, और घरचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं, ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की। कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ
1: कहेंगे। बिल्कुल ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में जब हमें पहली साइकिल मिली थी, तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी
1: चाहिए। बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे एक अनुश्रुता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है। और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
1: कितनी अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते। अगर बच्चे ने कह दिया मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। और आज 2-2 दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुनना, ये गाना कोई दूसरा सुनवा देंगे। गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता की दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
0: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन लें।
1: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है
0: तो पढ़िए ना।
1: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे

0: हाँ तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझ कर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इसलिए उन्हें साइकिल दे दी जाती थी। लेकिन
1: दुपहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक की चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द है इसमें। इसके जो अन्य शब्द हैं, योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है, इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, इसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान

0: सकता है इसकी तैयारी की जाती है।
1: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
0: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
1: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
0: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था
1: बहुत सुंदर गीत था और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है
0: जी।
1: और चंचल हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है।
0: तो हमारे इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए किसी भी तरह।

0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने ये सब्जी खाई भी है। वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चिले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ चिले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जन जल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है
1: जी।
0: तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित है और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफ़ी सम्मान की बात होती है।

0: सो थैंक यू सो मच, और ये इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
1: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
0: कोई नहीं, अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ ये हेडक्वार्टर्स है, और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं, पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहाँ पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
1: जी,
0: ये हो गया पहला सवाल।
1: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
0: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट, लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाख भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ

हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना. तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है. अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं. और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी. तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की

0: है। इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियाँ
0: और विविध भारती और अलिया वर्जंग।
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो. यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है. उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं. तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत ज़रूरी है. तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए. अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से. इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं. क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं. स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें. टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है.
1: रिश्तेदारों को
0: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे, शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है. अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4-5 साल के बाद हो जाता है. तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है. ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस. ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं. मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्त्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है. शिवाजी पांडा सर हैं, काफ़ी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी है, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में. सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं. हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा. वो खुद भी hearing impairment है उनको है, and Gallaudet University में डीन रह चुके हैं. So it is possible, everything is possible, but timely और appropriate support system लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल.
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके. सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे. हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके. एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ. टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं. प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड.
1: क्या बात है.
0: तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल. प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है. टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल.
1: बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूँ तो आप जोर से आवाज़ बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है. आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देर इज़ नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन. हमें जब आवाज़ आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहाँ से आवाज़ आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है. अगर बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके. अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहाँ पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. अगेन

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल

0: घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोरबेल. तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज. बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है. पर उसके लिए जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है. बट वेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है. तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए. और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है. तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक.
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है.
0: एग्जैक्टली.
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है. यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो.
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी.
1: जी, सुनते हैं ये गाना.

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा, वाचा और संप्रेषण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेषण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा, वाचा और संप्रेषण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं,
0: जी
1: पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग। एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफ़ी अलग हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं।
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट हाँ,
0: तो उनके लिए भी
1: उनके
0: आपकी
1: लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज़ एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके। तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफ़ी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आपको

0: में कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के वो समझता होगा, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें, क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल हैं, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं तो कहूँगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस, इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो सपोर्ट लेना स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफ़ी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज़ इज़ जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और
1: बिल्कुल
0: कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें, और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है? क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंड सेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इशूज़ और कंसर्नस नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्नस आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज़्यादा देखा है मैंने, वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहाँ पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहाँ से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो।
1: बिल्कुल,
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स हैं ना हम सबके, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले

0: करते हैं. फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स. ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विथ योर स्पीच. ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है. तो बिहेवियर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स. ओके, तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है. ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो ज़रूरत है या लर्निंग नीड्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की ज़रूरत है. ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फ़र्क है. मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा. हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज़ कौन सी है, इस आवाज़ का मतलब क्या है, आवाज़ आ कहाँ से रही है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है. तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा. हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूसली पहनना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए. जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज़्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा. जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड. सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज़्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा. ओके, पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत ज़रूरी है. अब एग्जांपल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चारी अलग अलग चीजें खोलते हैं. ओके, क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है. ओके, बुक इस तरीके से खुलती है. ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट. ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. तो हेंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर ले

0: देखते हैं कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा,
1: अभ्यास होगा।
0: हाँ, जितना ज़्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊँ रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊँ, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं, तो वो जो विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड, ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
1: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में कुछ भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं, अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: सी, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट, एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा। ओके, कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग, एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज। ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज़ होते हैं, नहीं, दे आर नो कॉग्निटिव इशूज़, नो अंडरलाइंग इशूज़ एज सच, बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। तो वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, बट अगेन सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज़ का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं। वैसे
1: बिल्कुल, यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल
1: ए दिल है मुश्किल जी ना, यहाँ ये जी सुनते हैं ये गाना, ए दिल

0: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल है तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूँ तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज़ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज़ मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज़्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता
0: है। बिल्कुल। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
1: ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो, हमारे पास अलग अलग स्कॉलर

0: स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफ़ी डिफिकल्ट है, यू नो मैं एजुकेशन कहाँ से लूँ और कैसे लूँ। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको बीएड का कोर्स करना है, एमएड का कोर्स करना है या डिसलिटी आईएसएल का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन, ओके, दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज़ टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एडुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीज़ें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, we still have to, you know, develop awareness और awareness की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये issue है, अगर ये concern है तो मुझे कहाँ जाना है, okay? ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक concern है, अभी भी हमको awareness में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। If I can quote a thing is कोविड के टाइम पे, यू नो दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज़ नो इंटरप्रेटर, ओके। तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज़्यादा इनरोल होना ज़रूरी है। थर्ड इज़ द एक्सेसिबिलिटी, इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते हैं तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज़ पे और लाइन अप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे, कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल
1: नोट, आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड, ओके। सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है, ओके। सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं। एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स। कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं, दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है। बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफ़ी ज़्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू, ओके। थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर।
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी। अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव। एट द एंड ऑफ द डे माइंड सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।

0: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
1: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ़ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक। हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना आई हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल, ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट। फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहाँ पे चलती है। फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक, ओके। देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके। और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एडुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पर भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल। सो एडुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से के पीएचडी तक, एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहाँ तक पहुँच सके, रीच दी अनरीच, तो हम वहाँ जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो ज़रूरत हो, ओके, वो हम देते हैं।
0: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
1: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHT NIC वेबसाइट है, आप वहाँ जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे, यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ।
0: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी, जिनके घर में जिन बच्चों को, जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: sure.
0: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विद मी।
0: तुमको देखा तो ये ख्याल
1: हाँ,
0: है,
1: ऑल गुड,
0: तो सुनते हैं ये,
1: ठीक है।

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी, और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम, एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग with everything, so thanks to them, thanks to all the listeners कि आप सुने, और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

प्यार हो मेरा, बहार हो मेरा। उसके इस गीत से बहार आ गई थी जिंदगी में, पर अचानक वक्त की धूल भरी आंधी चली और जिंदगी के मनके के कुछ मोती टूटकर बिखर गए। जिंदगी उदास गीतों का सिलसिला बन गई।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। उस रोज गाया था उसने एक गीत

मुलाकातें होती रहीं, इजहारे मोहब्बत होती रही, पर मुलाकात में शिकवे शिकायत के रंग घुल गए, रूठने

मुलाकातें होती रहीं, इजहार मोहब्बत होती रही, पर मुलाकात में शिकवे शिकायत के रंग घुल गए, रूठने मनाने का सिलसिला तेज हो गया, नज़दीकियाँ दूरियों में तब्दील होने लगीं, नज़रें खफा हो गईं, पारदर्शी दिल पर धुंध छा गई, गुफ्तगू खामोशी में बदल गई और फिर जिंदगी को उदास रंग रास आ गया।

हुस्न और इश्क का मिलन होता है तो समझ जाती है जिंदगी। इश्क में जब दिल जकड़ जाता है तो जिंदगी की परेशानियां आसानियों में बदल जाती हैं। लेकिन जिंदगी कभी एक सुर में नहीं गाती। जिंदगी के थाट पर विविध रंगी राग गाए जाते हैं। जिंदगी के समीकरण डगमगाए और प्रेम राग उदास राग में बदल जाता है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। बदलता है प्रेम का मौसम, काली घटाएं घिराती हैं, जिंदगी की राहें भटक जाती हैं, कांटों का लंबा सफर बन जाती है जिंदगी। मोहब्बत भरी बातों में तकरार के अल्फाज खास हो जाते हैं, मोहब्बत के लिए वक्त कम पड़ जाता है, तकरार की घड़ियां लंबी हो जाती हैं, जिंदगी मोहब्बत और तकरार

करार से मिलकर बनती है, पर जिंदगी तभी लुभावनी लगती है जब मोहब्बत भरे लम्हों से आबाद होती है जिंदगी। दो दिल रूठते हैं तो प्यार का मौसम उदास हो जाता है।

जिंदगी की हर कहानी में उसका नाम लिख दिया था। डायरी के हर पन्ने पर उसी की बातें दर्ज हो गईं। दुनिया के बहुत सारे रास्तों पर चलकर देखा, सबसे खूबसूरत रास्ता वही लगा जिस पर पड़े थे उसके कदम। लेकिन अचानक वक्त ने करवट ली, उसके कदम तेज हो गए, वो रास्तों की बजाय हवा में उड़ने लगा। बस उसी रोज से जिंदगी की राह में कांटे बिछ गए।

ख्वाहिशों के गांव में एक आशियां बनाया था, मन्नतों के धागे से गूंथी थी प्रेम की माला। मुश्किलों की आंधी ना आ जाए ये सोचकर सदका उतारा था। नीली आंखों की नदी में सुनहरे ख्वाब पनाह पाते थे, पर एक रोज काली घटाएं घिरी, नैनों में नदी तिराई, बरसने लगे नैन, होठों पर उदासी की बूंद ठहर गई।

FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाएं पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत। आज के कार्यक्रम के कलाकार रमेश चंद्र यादव और उनके साथी।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे रमेश चंद्र यादव और साथियों के गाए पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत। यह कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी खंडवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र के इस शेर के साथ लीजिए दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी लेकर। तो मैं आपका दोस्त और कार्यक्रम का होस्ट संचित चौकड़े आपका स्वागत करता हूं। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज है बुधवार और हम बुधवार को मनाते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों का स्वर्णिम उत्सव। तो आज के हमारे क्रम में क्या कुछ खास है वो हम आपको आगे बताएंगे। हम क्रम शुरू करें उससे पहले आपको जल्दी से बता देते हैं आज के हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की इस साल की थीम क्या है। तो दोस्तों, अब आप ये भी जानते हैं कि हम इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं कार्यक्रम के अंत में। तो तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा युववाणी।

आज तो कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, क्यों ना पानी पूरी खाई जाए। नहीं, चाट, चलो चाइनीज ही खा लिया जाए। दोस्तों, ये मन है, इसका कुछ भी मन हो सकता है करने का, विशेषकर जब बात हो खाने की। हमारे लिए स्वाद महत्वपूर्ण है, ना कि उसको बनाने की प्रोसेस, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है या नहीं, कहीं गंदगी में बना खाना तो नहीं खा रहे। समोसे का स्वाद तो बढ़िया है, पर बस अंकल ने समोसे की पपड़ी को ठेले के चक्के के पास एक मक्खी लगते हुए लकड़ी के पटिए पर बेल दिया है, जिस पर पटिए पर गड़ी हुई खिल्लियों के निशान उस पपड़ी पर भी छप गए हैं। दोस्तों, हम देखते हुए भी अगर उस समोसे का स्वाद ले रहे हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक है और कई बार जानलेवा भी। इन्हीं सब से हमें जागरूक करने के लिए हर वर्ष 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यही है कि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना। भोजन केवल हमारी भूख मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, विकास और जीवन की गुणवत्ता का आधार भी है। यदि भोजन सुरक्षित नहीं है तो वही भोजन अनेक बीमारियों का कारण भी बन सकता है।

दोस्तों, इस बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर, यानी कि समस्या से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। और इस साल का स्लोगन है फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस, या खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। यह स्लोगन हमें बताता है कि सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना केवल सरकारों या खाद्य उद्योगों का कार्य नहीं है, बल्कि किसान, उत्पादक, विक्रेता और उपभोक्ता को भी सभी समान जिम्मेदारियां निभानी होती है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि भोजन ऐसा हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। भोजन में किसी प्रकार के हानिकारक जीवाणु तो नहीं है, वायरस, रसायन, कीटनाशक या अन्य दूषित तत्व मौजूद तो नहीं है। खेत से लेकर थाली तक भोजन की पूरी यात्रा के दौरान उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। दोस्तों, यदि भोजन दूषित हो जाए तो इससे फूड पॉइजनिंग, दस्त, उल्टी, पेट दर्द, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती है। कई बार इसके गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर

उद्योगों का कार्य नहीं है, बल्कि किसान, उत्पादक, विक्रेता और उपभोक्ता को भी सभी समान जिम्मेदारियां निभानी होती है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि भोजन ऐसा हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। भोजन में किसी प्रकार के हानिकारक जीवाणु तो नहीं है, वायरस, रसायन, कीटनाशक या अन्य दूषित तत्व मौजूद तो नहीं है। खेत से लेकर थाली तक भोजन की पूरी यात्रा के दौरान उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। दोस्तों, यदि भोजन दूषित हो जाए तो इससे फूड पॉइजनिंग, दस्त, उल्टी, पेट दर्द, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती है। कई बार इसके गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में। आज के दौर में खाद्य सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्वीकरण और आधुनिक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के कारण भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि भोजन हर स्तर पर सुरक्षित बना रहे। दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें समझाने का प्रयास करता है कि भोजन की सुरक्षा केवल किसी एक विभाग या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें किसान, उद्योग, वैज्ञानिक, परिवहनकर्ता, दुकानदार और उपभोक्ता सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का प्रभाव पड़ना भी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ना, लोगों की कार्य क्षमता प्रभावित होना, परिवार और देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना, यह भी इसके कारण हो सकते हैं। दोस्तों, फूड सेफ्टी की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। कुछ सरल आदतें अपनाकर हम अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे हाथों की स्वच्छता, भोजन बनाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, फल और सब्जियों की सफाई, फल और सब्जियों के उपयोग से पहले साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि उन पर मौजूद धूल, मिट्टी और रसायनों के अंश हट सकें, कच्चे और पके भोजन को अलग रखें, सुरक्षित भंडारण, भोजन को ढक कर रखें और आवश्यकता पड़ने पर रेफ्रिजरेटर में संग्रहित करें, लंबे समय तक खुले में रखा भोजन खाने से खराब भी हो जाता है। दोस्तों, सुरक्षित भोजन स्वस्थ जीवन की पहली शर्त है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए भोजन की सुरक्षा केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझना भी है। विश्व खाद्य सुरक्षा 2026 का संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस, खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि समस्या से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन के लक्ष्य को साकार करें और सुरक्षित, पौष्टिक तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।

0: आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के स्मरण उत्सव के उपलक्ष में लघु नाटिका आकाशवाणी की 3 पीढ़ियां। इसके लेखक और निर्देशक हैं संचित चौकड़े।
1: विवान, खिड़की लगा दूं? ठंडी हवा आ रही है।
2: ओके पापा। पापा, मुझे भी गणपति वाला डांस करना है, वैसे ही जैसे वीडियो में देखा था। हम कब ऐसा एंजॉय करेंगे? चलो ना पापा, हम भी करते हैं।
3: कैसे समझाएं अपनी सी जान को कि परदेश में त्योहार कैसे मनाते हैं?
1: बड़ा होगा तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हमें भी शुरुआत में अजीब ही लगा था ना।
4: हाँ, लगा तो था।
1: अरे विवान, फिर तुम फोन यूज करने लगे। लाओ इधर दो। अरे ये धुन तो कहीं सुनी हुई लगती है। ये आवाज कैसी? ये तो आकाशवाणी लग रहा है।
2: हाँ पापा, ये आकाशवाणी है।
5: जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पलक, जिगर मुरादाबादी के इस शेर के साथ स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आज के कलाकार में, जहां हम बातें करते हैं हमारे युवा उभरते सितारों से। आज हमारे साथ मौजूद हैं किशोर कुमार की नगरी खंडवा से आए संगीतकार और रंगकर्मी संचित चौकड़े। संचित, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद पलक।
5: संचित, हम ये जानना चाहेंगे।
1: अरे शिवानी, विवान ने आकाशवाणी कैसे लगा लिया?
4: अरे माँ ने बताया था, फोन पर एक एप्लीकेशन है न्यूज ऑन AIR, वरना घर से मीलों दूर कहाँ कोई अपना मिलता है। तभी जनाब विवान ने कहीं तो सुन लिया होगा तो लगा दिया। क्यों, तेज तो है ना अपना विवान?
1: हाँ हाँ, तेज क्यों नहीं होगा, अपने पापा पर जो गया है। पर शिवानी, सच में बात तो तुम्हारी सही है। जब से यहाँ जापान में शिफ्ट हुए हैं, अपनी मिट्टी से छूट गए। आकाशवाणी सुनते हुए कभी कभी अपने देश की मिट्टी की खुशबू की याद आने लगती है और वो पुराने दिन याद आने लगते हैं।
4: लो, माँ का वीडियो कॉल आ गया।
1: हेलो माँ, कैसी हो?
7: मैं ठीक हूँ बेटा।
1: पापा, प्रणाम।

0: खुश रहो बेटा।
1: अभी थोड़ी देर पहले आकाशवाणी पर सखी सहेली सुना तो तेरी याद आ गई। याद है जब तू छोटा था तो कैसे रेडियो की बटन ऑन होते ही नाचने लगता था? बहू तुझे एक बात बताऊं, जब अक्षय 6 महीने का था तब मैं इसके पास रेडियो लगाकर घंटों घर के काम कर लिया करती थी और ये मस्त रेडियो सुनता रहता था। और शायद इसीलिए इसे इतना म्यूजिक का सेंस भी आ पाया है। क्यों गुड्डू, सही कहा ना?
2: मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ क्या? आप भी अब तक गुड्डू गुड्डू कहती हो।
1: बेटा तू कितना भी बड़ा हो जाए, हमारे लिए तो हमारा गुड्डू ही रहेगा। क्यों बहू?
3: हाँ सही कहा मम्मा।
2: और माँ आज भी मुझे सारे प्रोग्राम याद हैं। बाबूजी सुबह से रेडियो ऑन कर देते थे जो कि रात तक चलता था। शास्त्रीय संगीत, छाया गीत, जय माला, चित्रलोक, झरोखा, हवा महल। माँ बोलो याद है या नहीं?
1: याद तो है बेटा, हमारी आकाशवाणी को पूरे 90 वर्ष हो गए हैं हमारा मनोरंजन करते हुए और हमें सटीक जानकारी देते हुए। गुड्डू यादें तो बहुत सारी है। बहू एक बात बताऊं, गुड्डू के पापा ने मुझे पहली सालगिरह पर रेडियो गिफ्ट किया था, आज भी रखा है वैसा की वैसा। गुड्डू के पापा तो अमीन सयानी की आवाज भी निकालते थे।
3: अमीन सयानी?
0: हाँ बेटा अमीन सयानी।
3: प्रणाम पापा जी।
0: खुश रहो बेटा। अरे जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तब पढ़ाई के समय आकाशवाणी सुनते सुनते ही पढ़ाई करते थे। अब उस समय अंग्रेजी सीखने के लिए कोई साधन तो था नहीं, तो तब हम आकाशवाणी पर अंग्रेजी समाचार सुन सुन कर अपनी अंग्रेजी सुधारा करते थे। अरे हमने तो देश के बड़े बड़े गवैयों के गाने, देश के नामी कलाकार, संगीतज्ञों को भी आकाशवाणी से सुना है।
3: अरे वाह क्या बात है।
2: अरे पापा आप क्या, हम भी ऐसे ही पढ़े हैं। मैंने भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के दोनों में आकाशवाणी का खूब सहारा लिया है। कभी मोटिवेट होता तो कभी एंजॉय करता था। और तो और आपको बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ जापान में भी हमारे भारत के बच्चे पढ़ने आते हैं। अपने दो घर छोड़ के कुछ लड़के रहते हैं तो उन्होंने बताया कि हम पढ़ते वक्त आकाशवाणी लगा लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो वो जब भी फ्री होते हैं हमारे घर आ जाते हैं और हम सब साथ में मिलकर आकाशवाणी सुनते हुए खूब एंजॉय करते हैं।
3: मम्मी सच कहूँ ना तो हमारा तो एक तरह से आकाशवाणी से ऐसा रिश्ता हो गया है कि हमारा सुख दुख का साथी हो। सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सुनते ही अपनापन सा लगता है। और अक्षत को तो कितना कुछ याद है आकाशवाणी के प्रोग्राम्स के बारे में।
2: याद क्यों नहीं होगा, आकाशवाणी सुनते सुनते बड़े हुए हैं और आकाशवाणी ने दिन ब दिन अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता भी बढ़ाई है और इसी कारण से आकाशवाणी आजकल बहुत सारे नए श्रोता जोड़ते चले जा रहा है। हर उम्र हर वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम, युवाओं के लिए युवाणी, महिलाओं के लिए नारी जगत, तो वहीं हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए किसान वाणी। पर मेरा मनपसंद कार्यक्रम तो युवाणी है, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नए गीत संगीत।
3: लीजिए जनाब आपका फेवरेट शो युवाणी भी शुरू हो गया।
2: अरे सुनने दो, आज कौन प्रेजेंट कर रहा है? विवान वॉल्यूम बढ़ाओ प्लीज।
4: दोस्तों हाजिर है आपका दोस्त और कार्यक्रम का होस्ट संचित चौकड़े।
2: चलो मम्मी पापा मैं और कॉल लगाता हूँ फिर।
1: हाँ हाँ तेरा फेवरेट आरजे जो आ गया है तो हमसे क्यों बात करेगा। अच्छा बेटा तुम लोग कार्यक्रम सुनो, हम भी रेडियो लगा लेते हैं।
3: जी मम्मी जी। जी पापा जी। प्रणाम।
5: लगता है कोई आया है।
6: हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हो आप?
7: मैं ठीक हूँ बेटा। काव्या तुम थोड़ा लेट हो गई, वरना अक्षत और शिवानी से वीडियो कॉल पर तुम्हारी भी बात हो जाती। गुड्डू का फेवरेट युववाणी शुरू हो गया है तो उसने हमें टाटा बाय बाय कर दिया। आकाशवाणी सुनकर वहाँ जापान में अपने देश को महसूस करता है बेचारा।
6: सही कहा आंटी, सच कहूँ तो विदेश में जाकर ही पता चलता है कि अपने देश की छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी होती है।
5: बिल्कुल बेटा, आकाशवाणी की कोई भी धुन सुन लो लगता है अपना कोई पास बैठा है।
0: हमारे जमाने में रेडियो कोई सामान नहीं था, अरे घर का एक सदस्य था बेटा।
6: और आज भी है अंकल। लगता है आदित्य आ गया।
8: नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी।
5: आओ आओ बेटा। काव्या तुमने बताया नहीं कि आदित्य भी आ रहा है?
9: अरे वाह आज तो पूरी बैठक जमी हुई है।
8: अरे काका आप कहाँ ऐसे बैठ के होती है, सब मोबाइल में जो लगे रहते हैं आजकल।
9: और सबसे ज्यादा तुम्हारी पीढ़ी।
8: लेकिन एक

0: बात बताऊँ, मैं रोज मोबाइल पर आकाशवाणी के समाचार सुनता हूँ।
1: अच्छा, तुम भी?
0: अरे क्यों नहीं, सही और भरोसे की खबर चाहिए तो आज भी आकाशवाणी सबसे पहले याद आती है।
2: अरे हमारे समय में तो रेडियो सुनने का अलग ही मजा था।
3: खासकर बिना का गीतमाला।
4: उसके बारे में बहुत सुना है मैंने।
3: नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त नरेश बोल रहा हूँ।
2: वाह वाह, एकदम पुराने दिन याद आ गए।
1: कॉलेज के समय से यही नकल करते आ रहे हैं।
0: लेकिन अंकल एक बात बताइए, आपने रेडियो से क्या क्या सीखा?
3: बहुत कुछ बेटा, बहुत कुछ। भाषा, उच्चारण, सामान्य ज्ञान और दुनिया भर की बातें।
1: और तुम्हें बताऊं, समाचार शुरू होते ही पूरे घर में सन्नाटा हो जाता था।
2: और परीक्षा के दिनों में प्रेरक कार्यक्रम सुनकर पढ़ाई का उत्साह और बढ़ जाता था।
4: हाँ, मैंने भी अपने मम्मी पापा से सुना है, उस समय रेडियो ही सबसे बड़ा शिक्षक था।
0: अंकल एक बात बताओ, आपको सबसे यादगार क्या लगता है?
2: क्रिकेट कमेंट्री और भारत का मैच हो तो पूरा मोहल्ला रेडियो के आस पास बैठ जाता था।
1: और तो और, त्योहारों के विशेष कार्यक्रम, होली, दिवाली, स्वतंत्रता दिवस का सजीव प्रसारण, शुरू होते ही रेडियो से हटने का मन ही नहीं करता था।
4: यानी हर मौसम का अपना रेडियो।
1: बिल्कुल सही कहा।
4: आंटी, आपने सही कहा था कि पहले के लोग सिर्फ सुनकर आकाशवाणी के नाटक समझ लेते थे।
1: हाँ हाँ बेटा, उस समय आकाशवाणी के नाटकों को केवल सुना ही नहीं जाता था, जिया भी जाता था।
3: अरे हाँ, रेडियो सुनने वाला हर इंसान अपने मन का निर्देशक बन जाता था।
0: बिना देखे?
2: हाँ, अपने मन का निर्देशक बन जाता था।
4: सच में आकाशवाणी ने हर उम्र के लिए कुछ न कुछ दिया है,
1: जैसे महिलाओं के लिए सखी सहेली,
3: और हम जैसे संगीत प्रेमियों के लिए शास्त्रीय संगीत,
0: और युवाओं के लिए युवाणी,
4: और बच्चों के लिए कहानियाँ।
1: इसीलिए तो आकाशवाणी हर घर की साथी है।
0: समय कितना बदल गया ना, पहले ट्रांजिस्टर था, अब मोबाइल है। लेकिन आकाशवाणी की आवाज़ सुनते ही आज भी वही अपनापन महसूस होता है।
2: बिल्कुल सही कहा।
4: शायद यही वजह है कि 90 साल बाद भी लोग आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं।
5: चलिए अब इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त संचित को। नमस्कार।
1: सुनिए जी, कार्यक्रम खत्म हो गया, चलिए बच्चों को फिर से फोन लगा लेते हैं।
6: नमस्ते माँ।
7: दादी, मैंने पूरा प्रोग्राम सुना और मैं भी बड़ा होकर आकाशवाणी में बोलूंगा।
3: जरूर बोलना बेटा, जरूर बोलना, और हम सबसे पहले तुम्हें सुनेंगे आकाशवाणी पर।
2: और हम मिठाई बांटेंगे।
0: देखिए ना, एक परिवार जापान में है और दूसरा भारत में, लेकिन आकाशवाणी ने सबको एक साथ जोड़ दिया है।
4: यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है।
6: यहाँ विदेश में रहते हुए जब आकाशवाणी सुनते हैं तो लगता है जैसे अपने घर के आंगन में बैठे हों,
8: और अपने देश की खुशबू भी साथ महसूस होने लगती है।
1: इसीलिए 90 साल बाद भी इसका रिश्ता लोगों से बना हुआ है।
3: अरे भैया, साधन बदले लेकिन दिलों का जुड़ाव नहीं बदला।
1: तीन पीढ़ियाँ,
9: एक परिवार,
10: हमारी अपनी आकाशवाणी।
11: आकाशवाणी की तीन पीढ़ियां। अभी आप सुन रहे थे संचित चौकड़े की लिखी लघु नाटिका। आइए अब आपका परिचय इस नाटिका के पात्रों से करवाते हैं। दादी जी की भूमिका साकार की विभूति बोरासिया ने। दादाजी बने संचित चौकड़े, वहीं पुत्र आदित्य श्रीवास्तव, बहू सौंदर्या पहारे और पोता लय गुप्ता। काव्या की भूमिका में थी सृष्टि यादव और आदित्य की भूमिका में थे बृहत अटकड़े, और उद्घोषक की भूमिका को आवाज दी पलक गुप्ता ने। वहीं रमेश चाचा बने हिमांशु दुबे। इस नाटिका को प्रस्तुत किया संचित चौकड़े ने। आइए दोस्तों, इस लघु नाटिका के बाद सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, इस गीत को सुनने का और वक्त नहीं है क्योंकि आपको प्रश्नों के उत्तर भी तो बताना है। तो दोस्तों, अब समय हो चला है क्रम को हमारे यहीं समाप्त करने का। हम कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले जल्दी से आपको बता देते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। हमारा दूसरा प्रश्न था, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की इस साल की थीम क्या है? इसका उत्तर है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। तो कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए अपने दोस्त संचित को। नमस्कार।

श्रोताओ, आपने सुना युववाणी कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुल्ले का नमस्कार। कार्यक्रम की पहली आवाज कविता कृष्णमूर्ति की, फिल्म अनुराधा से है ये गाना।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में हम सुन रहे थे फैज अनवर का गीत फिल्म अनुराधा। और आइए अब गुलजार का गीत आपको सुनवाते हैं, आवाज लता मंगेशकर और एमजी श्रीकुमार की, फिल्म दिल से।

श्रोताओ, अभी आपने सुना गुलजार का गीत, ए आर रहमान का संगीत, और अब इलैया राजा के संगीत निर्देशन में गुलजार का एक और गीत आपको सुनवाते हैं, सुरेश वाडकर की आवाज, फिल्म सदमा।

0: कहानी।
1: 5 जून है बेहद खास, क्योंकि है विश्व पर्यावरण दिवस और माह का पहला शुक्रवार। हम पेश करेंगे एक कहानी।
2: सच कहूं, अगर वो पौधे ना होते तो शायद मैं भी ना बचती। मैं अपने पौधों से बातें कर अपना सारा सुख दुख बांट लिया करती। हाँ सचमुच, मुझे हमेशा लगता था पौधे भी बोलते हैं।
1: जरूर सुनिएगा सुबह 7:20 पर, 5 जून शुक्रवार।
0: एक कहानी।

श्रोताओं, विद्याधर मुली के साथ आकाशवाणी खंडवा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में अब समीर का गाना, आदेश श्रीवास्तव का संगीत।

जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज से हमने की थी और कार्यक्रम का समापन गीत भी कविता जी की आवाज में ही है, फिल्म साज। ये जावेद अख्तर का गीत है और संगीत उस्ताद जाकिर हुसैन का।

श्रोताओ, विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से। शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी देर में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में

0: सेंट्रल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
3: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
2: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
3: क्यों?
2: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
3: वो कैसे?
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
3: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
2: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
3: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
2: आप कब आ रहे हैं
3: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: कहानी।
1: 5 जून है बेहद खास, क्योंकि है विश्व पर्यावरण दिवस और माह का पहला शुक्रवार। हम पेश करेंगे एक कहानी।
2: सच कहूं, अगर वो पौधे ना होते तो शायद मैं भी ना बचती। मैं अपने पौधों से बातें कर अपना सारा सुख दुख बांट लिया करती। हाँ सचमुच, मुझे हमेशा लगता था पौधे भी बोलते हैं।
1: जरूर सुनिएगा सुबह 7:20 पर 5 जून शुक्रवार।

0: रंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम बने हैं साथी, निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा की। ट्यून कीजिए FM बैंड 101.2 MHz या डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा, निमाड़ की सुरीली धड़कन।

FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के चौड़ीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में 5 से 12 जून तक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की। और राज्यपाल वंगोभाई पटेल ने भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी महोत्सव के तहत पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि शामिलाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण ATF की कीमतें मार्च में 60 रुपए से बढ़कर मई में 182 रुपए प्रति लीटर हो गई थीं। ये सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी। इससे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया।
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना को भी हरी झंडी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी, यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के साथ साथ कई औद्योगिक और जनजातीय केंद्रों को भी बेहतर संपर्क देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों

0: की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने इसे वोकल टू लोकल की दिशा में देश की वैश्विक छलांग बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से होगी। इसके बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने, स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आज कहा कि इस दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो, पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर शिवपुरी जिले की मैहर शक्ति और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ज्योति जाटव ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर ज्योति ने स्वरोजगार की राह पकड़ी और आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: हमारे गांव में समूह चलाती हूँ, मेरे समूह हैं 11 समूह हैं, उनकी बैठक करती हूँ और उन मतलब जो भी बैंक सखी का काम करती हूँ और बुक कीपर का भी करती हूँ, तो उसमें मुझे 5000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और घर पे मेरी साड़ियों की दुकान भी है, तो साड़ियों की दुकान भी चलाती हूँ संजय सवेरे के टाइम में। तो आज मेरी इनकम 1,44,000 से अधिक है। मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद बोलना।
0: भोपाल के रविन्द्र भवन में कल शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर पत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादें बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश भर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस के तहत सुपोषण दिवस और टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। देवास में आज यूसीसी के संबंध में सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। अनूपपुर जिले की छात्रा कुमारी आंचलपुरी ने GEE एडवांस्ड 2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए ST PWD श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। छिंदवाड़ा में अवैध खनन के मामले में उमरानाला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें पैदल न्यायालय पेश किया है। शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कटनी में मलेरिया से बचाव और रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। खरगोन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जिले में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। नशे को कहे ना अभियान के अंतर्गत शाजापुर में आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कल 4 जून को होगी। शहडोल जिले में

श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नागरिकों से श्रम प्रहरी बनकर श्रम विभाग को सहयोग देने की अपील की गई है। नीमच के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले दो वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। आगर मालवा पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हाँ जब तक निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा ने सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन नहीं मिलतो है, तो आप भी सुनी लो निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

हमारा सभी किसान भाई बहन का साथ छे। आज आपकी बहन वाणी महोदय तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहनोनी, आज हम देख ही रहा है कि दिनों दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ी रहा है। न गांव हो या शहर, हर तरफ हम गाड़ी न को शोर सुनाई तेज। न हर कोई जरा सा काम न का लेना गाड़ी न को इस्तेमाल करना लगी गया है, जेका कारण गाड़ी न सी निकलने वालों धुआं सी पर्यावरण भी प्रदूषित हुई रोज। साथ ही हमारा स्वास्थ्य में भी कई तरह की परेशानी न होने लगी गई। पहले का समय में बैलगाड़ी साइकिल का को लोग अधिक इस्तेमाल करता था, न वो स्वस्थ भी रहता था, न पेट्रोल डीजल में होने वाला खर्च कभी बचाई लेता था। भाई बहनोनी, आज 3 जून छे जेखा की विश्व साइकिल दिवस का रूप में मनायो जाए। एक मनावना की शुरुआत साल 2018 से हुई। भाई बहनोनी, साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं है बल्कि पर्यावरण का बचावना न इंसान न का शरीर का निरोगी रखने को सबसे सरल न सस्तो जरियो छे। आजकल हम देखा कि बड़ा तो बड़ा छोटा छोटा बच्चा भी थोड़ी दूर जाना का लेना मोटरसाइकिल न को उपयोग करना लगी गया। जेका सी हजारों रुपया हमारा धुआं में उड़ी जाए न, अगर हम साइकिल उनाज काम का लेना साइकिल से जावा तो हमको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़तो है। भाई बहनोनी, साइकिल चलावना सी हमारी मुफ्त की कसरत भी हुई जाए, साथ सेहत तो मिल जाए न, हमारा रोजमर्रा का छोटा छोटा काम भी निपटी जाए। आज हम देख ही रहा कि खेत न का काम भी मशीन न सी होने लगी गया है, जेका सी हमारो समय तो बचे मगर वो उपकरण न चलावना में पेट्रोल डीजल या बिजली लगा जाए, जेका सी हमारा किसान भाई न को खेत में लगनों वालों खर्चो बढ़ी जाए, जेका सी किसान भाई न लाभ भी कम मिली पावज, न मशीनीकरण का कारण किसान न की मेहनत भी कम हुई गई, जेका सी स्वास्थ्य पर भी उनका बुरो प्रभाव पड़ा जाए।

कई तरह की बीमारी जैसा कि बीपी, शुगर, जोड़ न को दर्द होना लगी गयो छे। न ई बीमारी न में लगने वालों दवाई गोली न को खर्चो भी बढ़ी गयो। डॉक्टर न को भी कहनो छे कि रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट अगर हम साइकिल चलावें तो हमारो दिल भी मजबूत रहे, न फेफड़ा नख शुद्ध हवा देज। साइकिल चलाने से बिना खर्च का हमारा शरीर की सर्विसिंग भी हुई जाए। तो भाई बहनोनी, आप सब भी साइकिल को उपयोग जरूर करोगा। भाई बहनोनी, अब समय छे आपसी आज को खेती किसानी से जुड़े प्रश्न पूछने को। तो आज को हमारो प्रश्न छे, पार्श्विक खाद केख कयो जाए। न इना प्रश्न को उत्तर तो हम आपको जरूर बतावांगा, लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम का आखिर में तमा तक बने रहो हमारा साथ, न कार्यक्रम को आनंद लियो। भाई बहनों, पानी हमारी मुख्य जरूरत न मसी छे। एको एहसास हमको विशेष रूप में गर्मी में पतो चले, न अब तो बारिश को मौसम भी आने वालों छे। न हम सब न को पहलो काम छे बारिश का पानी ख संग्रहण करनो। बारिश को पानी ख संग्रहित करना का लेना हम छोटा तालाब, बांध न भूमिगत टैंक बनाई सकान, जेका सी पानी व्यर्थ बहना सी बचाए इनमें इकट्ठो हुई जाएगा। साथज भाई बहनोनी, भूमिगत पुनर्भरण तकनीक से गड्ढा न कुआ खोदी न हैंडपम्प न कुआ नख दोबारा पुनर्जीवित करे जा सकज। साथज सतह जल संग्रह सिस्टम मजी बारिश को पानी जमीन पर गिरज वो ढाल वाली जमीन की तरफ बही जाना लगज। गंदी नाली न म पानी ख जाना सी पहला जमीन पर रोकने की प्रक्रिया ख सतह जल संग्रह कयो जाए। एम बड़ा बड़ा पाइप न का जरिया बारिश का पानी ख कुआ, नदी न तालाब न म छोड़े जाए न जमा करे जाए, जी बाद में काम आवज, न जल संकट सी बचावज। भाई बहनोनी, छत प्रणाली इना तरीका में हम छत पर गिरने वाला बारिश का पानी ख इकट्ठो करी न रखी सकान। साथज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जरिए हम पानी ख भूमि में बड़ा बड़ा पाइप न का जरिए वापस जमीन में छोड़ी सकान। असो करना सी भूमि को जल स्तर जी की कम हुई गयोज ओख हम बढ़ाई सकान, न आने वाला समय में पानी की कमी ख कम करना में मदद करी सकान। भाई बहनोनी, अगर हम बारिश का पानी ख सहेजी न नहीं रखांगा तो आने वाला समय में खेती करनो भी मुश्किल हो सकज। जल संग्रहण को सीधो मतलब ई छे कि खेत को पानी खेत में, न गांव को पानी गांव में। बारिश को पानी हो या फिर घर से निकलने वालों पानी ओख हमख वापस जमीन का अंदर पहुँचाणु होएगा, ताकि भूजल स्तर ऊपर आई सक। हमारा किसान भाई भी अपना खेत का चारे तरफ ऊंची मेर बने न बारिश का पानी ख खेत नमज रोकी सकज, न धीरे धीरे वो पानी जमीन का अंदर चली जाएगा, न खेत की नमी लंबा समय तक बनेल रहेगा। खेत न कल एक छोटा सा हिस्सा में तालाब जसो बने लेनु चाहिए, जेका सी ढलान की तरफ सी आने वालों पानी ओम इकट्ठो हो जाएगा। न संकट का समय ई पानी सिंचाई का काम या जानवर नख पिलाने का काम आवगा। साथज किसान भाई अपना खेत न गोदाम न का पक्का छत न सी गिरने वाला बारिश का पानी ख पाइप का जरिए पुराना कुआ या बोरवेल में उतारी न उनका रिचार्ज करी सकज। साथज भाई बहनोनी, ढलान वाली जमीन पर छोटी खाई न गड्ढा बनाणु चाहिए, जेका सी व्यर्थ बहना वाला पानी की रफ्तार कम हो जाए, न ऊ पानी जमीन में रिसी जाए। साथज भाई बहनोनी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना न मनरेगा का तहत खेत में तालाब बढ़ाने का लेना भी छूट दी जाए, तो किसान भाई अपना नज़दीकी कृषि विभाग या ग्राम पंचायत में जाई न एक ही जानकारी लई न लाभ उठाई सकाए। भाई बहनोनी, ई तो थी आपकी न हमारी थोड़ी सी बातचीत। न आव सुना यो निमाड़ी लोकगीत जेख गायो साधना उपाध्याय न साथी न।

0: भाई बहनोनी अब सुना पुनः प्रसारित भेंटवार्ता। मई जून माह में फल बगीचा नमक कराया जाना वाला आवश्यक काम। जानकारी दे रहा डॉक्टर अमित कुमार जी ने इनका सी बात करी रही बहन स्मिता बरोले।
1: भाई बहनों राम राम। आज हमारे साथ है कृषि महाविद्यालय खंडवा के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अमित कुमार जी और आज हम इनसे जानेंगे मई जून माह में फल बगीचों में किए जाने वाले मुख्य कृषि कार्य विषय पर। डॉक्टर अमित सर नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम।
1: सर हम

0: आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे खंडवा जिले में कौन कौन से फल बगीचे हैं वो लगाए जाते हैं और उनमें क्या कृषि कार्य की जाते हैं उनके बारे में।
1: सबसे पहले तो किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। खंडवा जिला जैसा कि उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य रूप से अगर फलों की बात करते हैं तो अमरूद की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है, यहाँ पे चीकू की भी खेती अच्छे से की जा सकती है, केले की फलों का उत्पादन भी बहुत अच्छा यहाँ पर ले सकते हैं किसान भाई। इसके साथ साथ में सीताफल लगा सकते हैं, बेर की खेती कर सकते हैं और भी पपीते की खेती अच्छे से की जा सकती है। तो काफ़ी सारी फसलें हैं जिनको आप लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो समय है फल बगीचों का, वो नए फल बगीचों की स्थापना का समय है। इसी के साथ साथ यहाँ से फल बगीचे जब किसान भाई लगाना चाहते हैं, कोई भी नए फल बगीचों का स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से कार्य किसान भाइयों को समय समय पर करने चाहिए, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर फल बगीचों की स्थापना आप करना चाहते हैं, जिसमें आप अमरूद की खेती कर रहे हैं, आम की खेती कर रहे हैं, अनार की खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि सर्वप्रथम जिस भी क्षेत्र में, जिस भी खेत में आप फल बगीचे का निर्माण करना चाह रहे हैं, वहाँ सबसे पहले तो आप एक गहरी जुताई कर लीजिए। गहरी जुताई करने के बाद आप अच्छे से उसको खेत की साफ सफाई करके उसको समतल कर लीजिए। उसके बाद में आपको मई जून माह में उचित दूरी पर उसका एक रेखांकन तैयार कीजिए पूरा वैज्ञानिक विधि के द्वारा। जहाँ जहाँ पे अपने गड्ढे किए करने हैं उसको मशीन की सहायता से या मजदूरों की सहायता से आप गड्ढे करवा लीजिए। गड्ढों का आकार हमेशा 1x1x1 मीटर क्यू के आकार के गड्ढे आपको करने हैं। जैसे ही आपके गड्ढे तैयार हो जाएं, करीबन 15 से 20 दिन या 25 दिन तक भी किसान भाई गड्ढों को धूप में खुला छोड़ दें, कि जब धूप में खुले गड्ढे रहेंगे, मई के माह में तापमान भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, जिसके कारण जब गड्ढों की जो भी मिट्टी होगी वो बाहर धूप के संपर्क में लगातार रहेगी, तो उसमें जो भी जीवाणु या कीटों के जो भी अवशेष पड़े हुए होंगे पहले से, वो एक तो नष्ट हो जाएंगे, और ऐसा करने से आगे जब भी आप फलों की स्थापना करेंगे पौधों की, तो उस समय आपको कीट और व्याधियों की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सकेगी
0: जी।
1: जिस प्रकार
0: और साथ ही बताएं कि नए फल बगीचा अगर वो लगाना चाहे तो अपने यहाँ कौन कौन से जलवायु के अनुसार जो अनुकूल पौधे हैं वो लगा सकते हैं। अब इसके साथ ये जानना चाहेंगे कि जैसे अगर जो नए पौधे लगाते हैं तो वो नर्सरी उसके लिए तैयार करनी पड़ती है, तो जो नर्सरी के पौधे हैं वो कहाँ से उनको उपलब्ध होते हैं या वो कहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं?
1: जी मैडम, किसान भाइयों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जब भी बागानी फसलों का आप चयन करते हैं तो सबसे प्राथमिक किसान की आवश्यकता होती है वो होती है अच्छी गुणवत्ता का आपको पौधा प्राप्त होना। उसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि अगर वो फलों की खेती करना चाहते हैं तो बहुत सारे सरकारी अनुसंधान केंद्र हैं जहां से डायरेक्ट आप फलों के पौधे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की नर्सरी अपने खेतों पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। देश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे आपको न्यू वर्गीय फलों की अगर चाहिए तो आपका महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अनुसंधान केंद्र है जिसके वहाँ से ला सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी फल वृक्षों को अगर आपको लेनी है तो उसके लिए उचित सब जगह अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं भारत सरकार के, ICAR के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, जहां से आपको अच्छी गुणवत्ता के पौधे प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ जहां पे बात आती है, कुछ ऐसे फल वृक्ष हैं जिनको किसान घर पे भी पौध तैयार कर सकता है, जैसे कि पपीता। तो पपीता के लिए बहुत सारी अनुसंधित किस्में हैं इस क्षेत्र के लिए, जिनको किसान अगर लगाता है तो निश्चित रूप से लाभदायक होगा उसके लिए। तो अगर इस प्रकार से पपीते के अगर लगाना चाहते हैं किसान नर्सरी, तो उसके लिए रेड लेडी एक किस्म है जिसको 786 के नाम से भी जाना जाता है किसानों के बीच में, उसके बीज किसान भाई लेके आ सकते हैं। 50 से 100 ग्राम बीज से करीबन 2000 पौधे उससे तैयार कर सकते हैं किसान भाई। तो अगर पपीते की पौध तैयार अगर किसान भाई अपने घरों पे करना चाहते हैं, जो आगामी वर्षा ऋतु है उसमें अगर पपीते के पौधों को लगाना है, तो उसके लिए जैसे ही पपीते के आप बीज लेके आए, उसको प्रो ट्रे के माध्यम से, एक तकनीकी है जिसके माध्यम से काफी अच्छी गुणवत्ता की पौध तैयार कर सकते हैं। प्रो ट्रे में एक प्रकार की प्लास्टिक ट्रे होती है जिसमें अलग अलग छोटे छोटे साइज के छिद्र रहते हैं, जिसमें के एक मीडिया तैयार किया जाता है जिसमें कोकोपीट, वर्मी कुलाइट एंड परलाइट तीनों को एक निश्चित अनुपात में, जिसका अनुपात 3:1:1, अर्थात अगर 30 किलोग्राम अगर आप कोकोपीट ले रहे हैं तो उसमें 10 किलोग्राम वर्मी कुलाइट और 10 किलोग्राम परलाइट का मिश्रण आपको तैयार करना है। कोकोपीट को हमेशा ध्यान रखें किसान भाई के, जिस भी दिन आपको प्रो ट्रे में उसको मिश्रण को भरना है उससे एक दिन पहले रात को एक बड़े प्लास्टिक ड्रम या किसी भी चीज में आपको पानी में गलाने के लिए रख देना है, जिससे वो सुबह तक पूरा गलने के बाद में एकदम फूल जाएगा, और उसको फिर जैसे ही फूल जाए तो उसको निकाल के और जूट के बोरों पर उसको

0: हल्का सा पानी उसका बाहर करके हाथ के द्वारा और उसको सुखा लेना हल्का सा। उसके बाद फिर बर्मी कुलाइट और परलाइट की एक निश्चित मात्रा प्रोट्रे की जो भी सेल है छोटे छोटे छिद्र उनमें भर दीजिए। फिर उसमें आप उंगली की सहायता से एक एक बीज करके हर एक सेल में आप डाल दीजिए और ऐसा करके आप थोड़ा सा उसमें पानी दे दीजिए। आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन में आपकी पौध बहुत बढ़िया हो जाएगी और 15 से 20 दिन बाद आप आसानी से उसको खेतों में स्थानांतरण कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर किसान भाई अगर पौध तैयार करेंगे तो इसमें एक तो आपके समय की बचत होती है, बहुत अच्छी गुणवत्ता की आपको पौध प्राप्त होती है जिसमें रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप कम होगा और निश्चित रूप से उनकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी होगी जिसके द्वारा किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा।
1: तो जैसे ये पपीते के लिए पौध तैयार कर फल वृक्ष के लिए कर सकते,
0: हर फल वृक्ष के लिए इतनी नहीं कर सकते हैं मैडम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कि वानस्पतिक वृद्धि के द्वारा आप नए पौधे तैयार करते हैं जिसमें कि कटिंग आपका आता है, ग्राफ्टिंग आती है, इनार्सिंग आती है, इनके माध्यम से किसान भाइयों को पौधे प्राप्त होते हैं। परंतु किसान भाई के पास इतनी तकनीकी सक्षम जानकारी नहीं होती जिसके माध्यम से वो अपने खेतों पर ग्राफ्टिंग कर सके, इनार्चिंग कर सके। इसलिए किसान भाइयों को हमेशा सलाह दी जाती है कि आप तैयार पौधे आपको सरकारी नर्सरी से मिल सकते हैं, वहाँ से लाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको जल्दी समय में अच्छे पौधे तैयार होकर मिल भी जाएंगे।
1: जैसे नर्सरी तैयार हो गई है या पौधों का स्थानांतरण कर दिया है, जैसे गर्मी में जैसे आपने बताया कि कृषि कार्य करके हमारे किसान भाई नए पौधे लगा सकते हैं, मानसून में कोई देरी होती है या फिर पानी लेट आता है और पौधे लगा दिए गए हैं, तो फिर उसके लिए क्या कृषि कार्य करने पड़ते हैं, समय समय पर क्या सिंचाई उनको देनी पड़ती है जिससे पौधे खराब ना हो, या कोई कीट व्याधि आती है तो उसके लिए किसान भाइयों को क्या कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में?
0: जब भी नए फल वृक्ष किसान भाई गर्मियों के बाद तुरंत आप जुलाई माह में लगाना शुरू करें तो अगर खुदा न खास्ता आपको अगर ऐसा लगता है कि बारिश होने में देरी हो रही है, तो वैसे तो किसान भाइयों को मेरी सलाह यही होती है हमेशा वैज्ञानिकों की कि कम से कम एक वर्षा हो जाने के बाद ही आपको फल वृक्षों का स्थानांतरण करना है और फल वृक्षों को स्थापित करना है जिस भी फल बगीचे में आप लगा रहे हैं। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा समय तक बारिश नहीं होती है, सलाह दूंगा कि वो बारिश की कमी को पूरा करने के लिए आप ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पहले से ही व्यवस्थित रखें अपने पास में, क्योंकि बारिश का कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं पहले से। हो सकता है आप लंबे समय तक सूखा पड़ जाए, 15 दिन 20 दिन आपके यहाँ बारिश नहीं हो, तो उस परिस्थिति में क्योंकि आप जब नए पौधे को स्थापित करते हैं तो समय समय पर अगर पानी उसको नहीं मिलेगा तो वो खराब होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों को बूंद बूंद सिंचाई पहले से अपने खेतों पर स्थापित कर लेना चाहिए जहाँ भी करना चाह रहे हैं। जब वर्षा ऋतु में नए पौधों का आप चयन करके आप लगाते हो फल बगीचों को, तो उस समय सबसे बड़ी जो समस्या रहती है किसान भाइयों की वो रहती है दीमक की। वर्षा ऋतु में दीमक का प्रकोप काफ़ी होता है, तो किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि प्रति पौधे को जब भी आप लगा रहे हैं तो प्रति गड्ढे में करीबन 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस एक कीटनाशक दवा है जो दीमक के नियंत्रण के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है, उसका प्रति गड्ढे के हिसाब से जरूर करें। और साथ ही साथ जो कवकनाशी बीमारियां हैं जैसे उकटा रोग कई किसी किसी फसलों में आता है शुरुआती अवस्था में, तो उसके लिए किसी भी अच्छे कवकनाशी का जिसमें कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का आप उपयोग कर सकते हैं, वाविस्टीन का उपयोग कर सकते हैं, तो उचित मात्रा में इनको भी प्रत्येक गड्ढे के हिसाब से डालेंगे तो कवकनाशियों के द्वारा होने वाले रोगों से और दीमक के प्रकोप से भी आप बच सकते हैं।
1: और अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ मुख्य रूप से अमरूद के बगीचे लगते हैं या केले के बगीचे लगाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या कृषि कार्य है और उसमें किसान भाई किन चीज़ों का ध्यान रखे उसके बारे में?
0: केले के लिए जलवायु काफ़ी अच्छी है, आपके पास के ही बुरहानपुर में बहुत अच्छी से केले की किस्म की खेती होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की किस्मों का उपयोग किसान भाई करते हैं। इस समय गर्मियों का समय है तो सबसे पहला काम तो किसान भाइयों को एक ध्यान में रखना है कि उचित समय पर सिंचाई की जरूर समुचित व्यवस्था आपको सबसे पहले करनी है। और जब भी अगर फल गुच्छों में आपके यहाँ आ गए हैं तो उसको धूप से बचाने के लिए पत्तों से ढक देना चाहिए जिससे कि आपके जो भी फल वृक्ष हैं वो डायरेक्ट या सीधे संपर्क में तापमान के या सूर्य के प्रकाश से ना आए, वरना फलों की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जून के अंतिम सप्ताह में अगर आप केले की नए बागान लगाना चाहते हैं तो खोदे हुए जो भी गड्ढे आपने तैयार किए हैं उसमें उचित मात्रा में 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 ग्राम आपको क्लोरोपाइरीफॉस प्रत्येक गड्ढे के हिसाब से डाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा आपके यहाँ कवकनाशी या जो भी दीमक का प्रकोप होगा उससे बचा जा सकेगा। और फिर समय पे आप केले की रोपाई कर सकते हैं। रोपण के लिए 3 माह पुरानी तलवारनुमा सकर्स आप किसान भाई हमेशा उपयोग करें। ये ध्यान रहे कि वो स्वस्थ हों और रोग मुक्त हों, उसमें किसी भी प्रकार की कीट और व्याधि पहले से नहीं हो। और ऐसा करने पर ऊपरी तने को कंध से 25 से 30

0: सेंटीमीटर पर काटने पत्तियों के ऊपर से, जैसे रोपाई से पूर्व सभी पत्तियों को 1 ग्राम वाविस्टियम प्रति लीटर पानी के घोल से उपचारित कर लें और रोपाई के समय केवल कंद भाग को ही मिट्टी में दबाएं तथा रोपाई के बाद सिंचाई आवश्यक रूप से करें। इस प्रकार से केले के नए बागान किसान भाई लगा सकते हैं। अमरूद भी अपने इस क्षेत्र का काफी महत्वपूर्ण फल है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की बहारें सामान्यतः देखी जाती हैं, जिनको अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से अपने यहाँ पे मृग बहार लिया जाता है, जिसके फूल जून जुलाई में आते हैं और उसकी फल आपको प्राप्त होते हैं नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी माह तक। पर फिर भी अगर कोई किसान अम्बे बहार को लेना चाहता है, जिसके फूल फरवरी मार्च में आ जाते हैं और उसके फल आपको प्राप्त होते हैं जुलाई से अगस्त माह में, तो उस समय सबसे ज़रूरी जो समस्या रहती है अमरूद के फलों में, वो रहती है आपके फल मक्खी की। तो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए आपको किसी भी कीटनाशक दवा जैसे कि डाइमेथॉइड या रोवर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर पानी के साथ में आप छिड़काव करें, या नीम ऑयल का भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके द्वारा किसान भाइयों को अच्छी फल मक्खी के नियंत्रण में मदद मिलती है और इससे अच्छी गुणवत्ता के आपको अम्बे बहार के फल प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ अगर नए बगीचे किसान भाई जो अमरूद के लगाना चाहते हैं, जो जून माह के अंतर्गत मैंने जैसे पहला चर्चा में बताया हुआ है कि किस प्रकार से आपको गड्ढे तैयार करने हैं, अमरूद के पौधों को सामान्यतः 5x5 मीटर की दूरी पर आप लगाएं। ऐसा करने पर आपको करीबन प्रति हेक्टेयर में अगर बात करते हैं तो करीबन 400 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं, जिसके लिए तैयार गड्ढों में जून के माह में आपको 10 किलोग्राम गोबर की फड़ी हुई अच्छी खाद, या गोबर की खाद नहीं है तो आप केचुआ की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 किलोग्राम नीम की कली, 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस और इसके साथ साथ में 500 ग्राम आपको सिंगल स्पोर फॉस्फेट प्रत्येक गड्ढे के हिसाब से डालना है। डालने के बाद आपको गड्ढे को ऊपर तक भर देना है और उसके बाद जैसे ही एक बारिश हो जाए, मिट्टी जमीन में थोड़ा सा बैठ जाए समतल से, उसके बाद आप तैयार जो भी आप किस्म लगाना चाहते हैं अमरूद की, जो भी आपके लिए अच्छी है, जिसमें ग्वालियर 27 किस्म बहुत बढ़िया है, इलाहाबादी सफेदा आप लगा सकते हैं, लखनऊ 49 का आप चयन कर सकते हैं, ताइवान पिंक का आप चयन कर सकते हैं, इसके अलावा भी ढेर सारी अरका किरण जो कि लाल गूदे वाली अच्छी किस्म है उसका भी आप लगा सकते हैं। तो ढेर सारी किस्में हैं अमरूद की, इनको किसान भाई चयन कर सकते हैं और उससे अधिक से अधिक मुनाफा किसान भाई ले सकते हैं।
1: सर, आपने जैसे हमको ये जानकारी दी, अभी आपने केले के बारे में बताया, अमरूद के बारे में बताया, और जो हमारे यहाँ के किसान भाई ये केले और के बगीचे तो लगाते ही हैं, जैसे खास करके बुरहानपुर तरफ, और अमरूद के बगीचे हर जगह लगे ही रहते हैं। आप ये बात करें कि हमारे निमाड़ में मतलब बेर भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर बेर के भी पौधे लगाते हैं और बेर बिकता भी बहुत अच्छे उसमें है, तो जैसे अगर कोई किसान भाई बेर के बगीचे जिनके लगे हैं या लगाना चाहे, तो वो उसके लिए क्या कृषि कार्य कर सकते हैं या कैसे लगा सकते हैं?
0: बेर में मुख्य रूप से मैडम मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूँ कि इस समय सबसे ज़रूरी काम होता है वो होती है बेर के फलों के जो भी फल वृक्ष हैं उनकी कटाई छटाई। तो देश के उत्तरी या पश्चिमी भागों की बात करते हैं तो मई जून के माह में जब पौधों की अधिकांश पत्तियां जो हैं झड़ जाती हैं और पौधा क्या होता है उस समय पर अपनी आराम की अवस्था में, या जिसको वैज्ञानिक भाषा में सुसुप्त अवस्था कहा जाता है, उसमें चले जाते हैं, तो उस समय पर बेर के पौधों के ऊपर की टहनियों को 60 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक तने पर निकलने वाली जितनी भी शाखाएं उनको काट देना चाहिए और इसको लकड़ी या अथवा बांस के सहारे फीदा करना चाहिए। बड़े वृक्षों की चटकी और टूटी जमीन की छूती शाखाओं को भी छाट देना चाहिए, जो कि बहुत नीचे जमीन के आ गई ऐसी शाखाएं अगर बेर में हैं तो उनको भी आपको छटाई कर देनी है। छटाई का कार्य जहाँ तक है संभव हो सके मई में पूरा किसान भाइयों को कर लेना चाहिए। कटाई छटाई करते समय सामान्यतः पिछले वर्ष की शाखाएं 50% भाग काट देते हैं और तृतीय शाखाओं को पूर्ण रूप से एवं द्वितीय शाखाओं को 15 से 20 कलियां काट देने पर मजबूत एवं बहुत अच्छी शाखाओं वाले पौधे आपको आगे प्राप्त होंगे। रोग और प्रकोप से बचाने के लिए शाखाओं के कटे हुए स्थानों पर फफूंदनाशी जिसमें के बोर्डो पेस्ट का आप लेप लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी कीटनाशी उस पर प्रभावित नहीं होंगे। काट छांट के लिए तेज धार वाले औजारों का ही प्रयोग हमेशा करना चाहिए। मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि हमेशा जब भी काट छांट किसी भी फल वृक्षों की करें तो बहुत तेज धार वाली ही आपको औजारों का उपयोग करना है, अन्यथा उस स्थिति में क्या होगा, जब भी आप कटाई छटाई करेंगे तो जो भी फल वृक्ष है उसको कटाई छटाई के साथ में दूसरे हानियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए ऐसे औजारों का उपयोग करें जो तेज धार वाले हों। और पेड़ों में जब तक फुटाव ना हो तब तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जिससे कि जिन वृक्षों में चटाई का कार्य रह गया है तो उन्हें जून के प्रथम सप्ताह तक यह कार्य

0: पूरा कर लेना चाहिए और छटाई के पश्चात कटी हुई जो भी शाखाएं हैं उनको साफ कर देना चाहिए और फिर गर्मी में एक दो बार पेड़ों के नीचे गहरी जुताई करके उनको काफी लंबे समय तक छोड़ देना चाहिए, जिससे जब सूर्य के तापमान में लगातार आपका फल बगीचा बेर का जो संपर्क में रहेगा तो उसमें कीट व्याधियों की जो भी समस्याएं होंगी वो काफी हद तक कम हो जाएंगी।
1: जी डॉक्टर अमित सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और अंत में आप हमारे भाई बहनों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई सलाह देना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों, आप सभी को सर्वप्रथम तो धन्यवाद, अब जो आप इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं और साधुवाद के आप पात्र हैं। किसान भाइयों को एक सलाह मैं जरूर देना चाहूँगा कि इस समय आप देख रहे हैं लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। तो अगर इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों से मैं एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि जहाँ तक प्रयास हो आप फलदार वृक्ष अपने बगीचों में तो लगाएं लगाएं, साथ में आपके पास जो भी खाली जगह है जहाँ पे आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी आपके काम में वो नहीं आ रही है, तो वहाँ कोई भी देसी पौधों का भी आप चयन कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत आपको फल प्राप्त भी होते रहेंगे आपके परिवार की जरूरत के हिसाब से, और दूसरा वातावरण के लिए वो एक अच्छा उदाहरण होगा, जिससे कि यहाँ पे जो भी तापमान बढ़ रहा है उसमें भी कमी होगी, साथ ही साथ आपको ताजी हवा सभी देशवासियों को मिल पाएगी। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी हमारी किसान भाइयों को, तो फलदार वृक्ष लगा करके वो अपनी प्रकृति की सुंदरता को बचा सकते। बिल्कुल डॉक्टर अमित सर, आपने हमारी अच्छी सलाह दी, साथ ही हमारे को बताया कि फलदार वृक्षों को कैसे मई जून में इनका हम देखभाल कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद मैम।
2: भाई बहनों ने अभी सुनी मई जून माह में फल बगीचा नम कराया जाना वाला जरूरी काम विषय पर ई भेंटवार्ता। जानकारी दे रहा था डॉक्टर अमित कुमार जी, ने इनका सी बात करी रही थी बहन स्मिता बरोले। भाई बहनों ने अब आपको समाचार बताई देवन, कृषि विशेषज्ञ के अनुसार किसान भाई ने ख सलाह दी जाए कि इस बार मानसून की शुरुआत कमजोर न अनियंत्रित होने का कारण बोई जल्दी नहीं करो। जब कृषि विशेषज्ञ का द्वारा सही समय न पर्याप्त बारिश का आंकड़ा बताया जाए तब खेत न बोए कर। भाई बिंडोनी अब खंडवा मंडी भाव से प्राप्त भावना की जानकारी दे देवा। सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 4,000 रुपया न अधिकतम भाव रहा 7,099 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,992 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहा 2,440 रुपया प्रति क्विंटल। चना का न्यूनतम भाव रहा 5,252 रुपया न अधिकतम भाव रहा 5,901 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का का न्यूनतम भाव रहा 1,850 रुपया न अधिकतम भाव रहा 1,962 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर का न्यूनतम भाव रहा 5,801 रुपया न अधिकतम भाव रहा 7,799 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना का न्यूनतम भाव रहा 4,500 रुपया न अधिकतम भाव रहा 6,600 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग का न्यूनतम भाव रहा 5,000 रुपया न अधिकतम भाव रहा 7,425 रुपया प्रति क्विंटल। लोकवन गेहूं का न्यूनतम न अधिकतम भाव एक समान रहा 2,650 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों का न्यूनतम भाव रहा 6,655 रुपया न अधिकतम भाव रहा 7,601 रुपया प्रति क्विंटल। भाई बहनों ने अब मौसम की जानकारी दे देवा। आज सूर्योदय प्रातः 5 बजे न 39 मिनट पर हुयो न सूर्यास्त शाम 7 बजे न 4 मिनट पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। न अब सुना जियो निमाड़ी लोकगीत, जेख गायोज माधुरी शर्मा न साथी न।

भाई बहनों, अब समय छे कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा गया प्रश्न को उत्तर बताने को। तो आज को हमारो प्रश्न थो पाश्विक खाद के कहो जाए न। एको उत्तर छे पशु नसी प्राप्त पदार्थ जैसे कि हड्डी न खून गोबर न गौमूत्र से निर्मित खाद ख पाश्विक खाद कहो जाए न। इना उत्तर का साथ ज हमारा कार्यक्रम को समय भी यहाँ पूरा हो। तो आज्ञा देव आपके बहन वाणी महोदय ख राम राम।

सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब अगले विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल क्लास लाइव्स थ्रू रिफॉर्म एंड वेलफेयर। पार्टिसिपेंट्स आर अशोक टंडन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड शरद कोहली, इकोनॉमिक एनालिस्ट। Moderator is Anubha Rohatgi.
3: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
4: Thank you very much.
3: Thank you. I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
4: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in deep dive into each of those aspects.
3: Absolutely. Mr. Tandon.
5: Modi sarkar ne jo sudhar karyakram liye pichle 12 saal mein, usme jo madhyam varg ki arthik utthan mein bahut mahatvapurna bhumika nibhai hai. Tax mein chhoot, GST ka saralikaran, digital kranti, housing subsidy, जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
3: जैसे भी शरद जी ने
5: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी

0: रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास। हाउ बिग एन अचीवमेंट would do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak, yes, but this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya, you know, we've changed the definition, because poverty ko pehle kaise define karte the itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीइंग, यू नो, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना, या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities.
2: Absolutely.
1: Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि अब मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या, जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है, वगैरह वगैरह ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, इज कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकॉनमी डबल हुई है, तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
0: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ

0: भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं। आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है। और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस

0: हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की। तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए, जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए, गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव, वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
1: बिल्कुल।
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया, यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल, सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड। And a lot of youngsters, and today, just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
1: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here, government became an angel.
1: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers
1: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross-section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
1: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
1: they
2: a very, very active GDP.
1: In fact, actually,
2: we did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right.
2: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ गया है।
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है। बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स। सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बट आफ्टर दैट लास्ट ईयर वी सॉ द जीएसटी 2.0 ऑल्सो, हाउ हैव दीज टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स इन द पास्ट decade impacted middle class? So Tandon, what would you say to that?

0: कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
1: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव, आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है। और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
0: डिजिटल डिवाइड, जिसको
1: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज अनुभव दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन, एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कैसे ये कोविड में हम करते पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती, बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ। आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज
0: है। जो पिछले 12 सालों में काम
1: जो काम किया है उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं, और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
0: अशोक जी आप कुछ कहना?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
0: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
1: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाएं, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट पहुंच रहे, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
0: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान पर, अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा?

0: बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी, पहले आपसे?
1: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, मध्यम वर्ग का, जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश की, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
0: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। वुमेन, यू नो, आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
1: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har vargh ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain, ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी मिली, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
0: जी, अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम, दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं

0: भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाए तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन द स्पेशल मिडिल क्लास लाइव्स थ्रू रिफॉर्म एंड वेलफेयर, participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में

0: शामिल हुए उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतिव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
5: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी।

0: स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयाँ बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रूपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए एक गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं जवानी दीवानी फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं।
0: कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं।

एक ऐसा कलाकार जिसने टेलीविजन से शुरुआत की, तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपने स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान

असली ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और रायन मुखर्जी।

साल 2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

साल था 2002। फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर लेकिन

उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले क्या बात है।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, राम जी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हासन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू ही ये फिल्म बाद में राम जी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। राम जी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शान संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सिक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

इसके बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनके जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेटरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता है।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थीं और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

हाल ही के वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक

अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना।

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर। स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। माना कि बहुत हैं आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिल वाले दुश्मन को गले लगाया करते हैं। सामिन, हम में से बहुत लोग अपना जलवा बरकरार रखते हैं, और रखना भी चाहिए। इस जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। फना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।
1: हम

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है। हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

0: होती।
1: हुस्न का जलवा तो अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा। हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्मे मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्मे मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है। तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो जौक साहब फरमाते हैं, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदना।

जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा, लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल तो दे।

0: जाए रात।
1: वाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।